आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: Cool song.
1: Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है,
0: cool song.

Sunte în number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Am sunie.

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: दस मॉर्निंग आरज तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: Danisha.
1: Arijit Singh aur Harshdeep Kaur ki awaaz mein Rais movie se beautiful drag Zalim Ali on Radio 106.3 FM. Tanisha aage ji aapke saath mein 10 mornings lekar a very good morning meri jaan. Sunday ka din August 16th naye hafte ki shuruaat. I hope full josh aur enthusiasm ke saath hogi. They say na every day is a new opportunity. Waise hi lena hai har hafte mein bhi humne yahi manna hai. Theek hai? कैसे आप क्या हाल चाल है कैसा रहा आपका वीकेंड एंड फिलहाल क्या कर रहे हैं उठ चुके हैं अभी उठे हैं ऑलरेडी रेडी हो रहे हैं निकल चुके हैं व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन जानना चाहती हूँ मैं 3311-1063 पर
2: देखो जरा देखो नाम तेरा लिखा है
1: बड़ा ही सुंदर गाना है यार ये मतलब यू नो कि दैट काइंड ऑफ लव कि बस अब तो सब तेरा ही हो गया है वैसी वाली फीलिंग देता है ये सॉन्ग और ये जो अगला गाना है ओहो क्रेजी प्यार

0: क्रेजी मूवी थी भाई, और इंडिया में ऐसा कुछ हो भी रहा है इस वक्त तो।
1: पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले।
0: ओए होए, दिस ब्यूटीफुल ट्रैक इज ऑल्सो कमिंग, और साथ में

देखो याद आनी तो बनती है ना, मुझे भी आपकी बड़ी याद आई वीकेंड पे, आई होप आपको भी मेरी याद आई होगी। तो फटाफट से आ जाओ 3311063 पर मैसेज करो। दोज हु हैव ऑलरेडी यू नो आर ऑन द वे टू द वर्क, बस में है, ड्राइव कर रहे हैं किसी के साथ, पैसेंजर प्रिंसेस और किंग बन के, किंग नहीं प्रिंस बन के बैठे हैं, तो मैसेज कर दो यार। जो ड्राइव कर रहे हैं उन्हें नहीं करना है, ठीक है? आपने जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ या फिर यू नो लाइट पर रुको तब कर देना, मैं इंतजार कर लेती हूँ यार। हाँ जी, आपकी सेफ्टी इज फर्स्ट, मैसेज भले या बाद में कर देना, ठीक है मेरी जान। फिलहाल सेंडिंग नीलांजना की आवाज में मस्कारा ओनली ऑन रेडियो लव जियो बिंदास।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 हर जिस निशा को बिंदास मॉर्निंग में मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: तनिषा।
1: अरमान खान की आवाज में हक मूवी से कबूल है ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर एंड मैसेजेस का सिलसिला शुरू करते हैं। नाजनी जी का मैसेज आया है, कहती हैं, एज आई स्टार्ट माय डे आई जस्ट वांटेड टू टेक अ मोमेंट टू लेट यू नो हाउ ग्रेटफुल आई एम टू हैव यू इन माय लाइफ। गुड मॉर्निंग, दैट इज सो स्वीट इफ इट वाज मेंट फॉर मी। एंड आई वुड सजेस्ट कि आईने में देखकर खुद को भी ये बोलिया करो और अपने आसपास जो लोग आपके लिए स्पेशल हैं, कीमती हैं, प्राइसलेस हैं, उनके लिए भी, उन्हें भी बोल दिया करो। समझ रहे हो आपको? यू नो, कभी कभी महसूस करवाना कि कोई इंसान हमारी लाइफ में कितना स्पेशल है बहुत ज़रूरी होता है। बाय डिफॉल्ट तो देखो द फीलिंग्स एंड द वे वी टॉक टू देम और बिहेव विद देम वो बताता है, बट कभी कभी बोल के बता देना भी अच्छा होता है मेरी जन। एंड अबरार जी का भी गुड मॉर्निंग आया है मुझे फूलों और कॉफ़ी के साथ, ओए होए साथ में कुकीज भी हैं। और संतोष जी का भी गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग, मे योर मॉर्निंग बी फिल्ड विद फ्लावर्स, होप एंड ऑप्टिमिज्म, मे योर मॉर्निंग बी फिल्ड विद ऑल लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, हरपाल संधु फ्रॉम दुखान सिक्रेट जियो बिंदास, थैंक यू सो मच संधु जी। और शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज है, कहते हैं, थॉट ऑफ द डे, बींग हम्बल मीन्स रिकग्नाइजिंग दैट वी आर नॉट ऑन अर्थ टू सी हाउ इम्पॉर्टेंट वी कैन बिकम but to see how much difference we can make in the life of others, and that is so so so true. And jasa ji ka bhi good morning hai, good morning ji. Aur saath mein mujhe zakir mohammed ka message aaya hai, hi tanisha morning, enjoy today, I work so hard, oh ho ho, aapka kaam khatam ho gaya hai aur you are like starting, aapka aaj ka din hard hone wala hai, थोड़ा बताएं मुझे जाकिर जी। और यासिन अब्बासी जी का भी गुड मॉर्निंग आ गया है जी, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब मेरी स्पेशल वाली गुड मॉर्निंग तो मैंने मिस ही कर दी यार।
2: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल,
1: आय हाय,
2: लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस।
1: बस ऐसे ही गुड और नाइस लगते रहना है और बढ़िया दिन जाने वाला है जी। हाँ, अभी भेज रही हूँ बहुत प्यारा गाना नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में, प्यारे स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास
3: रेडियो ऑलिव पर। आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
5: कूल सॉन्ग।

0: Tanisha.
1: कविता कृष्णमूर्ति और अदित नारायण साहब की आवाज में नायक मूवी से चलो चले ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. और इस दिन में आगे चलने के लिए एक बहुत प्यारी सी बात मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. जस्ट लाइक हाउ इंस्टाग्राम हैज इट्स ओन एल्गोरिदम ना, जो भी चीजें आप देखते हो लाइक कॉन्स्टेंटली, अगर आपने किसी रील को देख लिया और बार बार सेम टाइप की चीजें आ रही है, दैट इज बेसिकली इंस्टाग्राम एल्गोरिदम वर्किंग दैट वे कि जो चीज आप देख रहे हो आपको पसंद आ रही है, आप जिसपे ज्यादा वक्त बिता रहे हो वही वो आपको दिखाएगा. सेम वे यूनिवर्स की हमारी

तो मैं तो टॉप करने वाली हूँ वट एवर, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बेस्ट केस सिनेरियो सोचो एंड यूनिवर्स विल हैंड इट टू यू. ऑब्वियसली एफर्ट्स रिक्वायर्ड है, कहोगे वरना मैंने तो सोच लिया पर हुआ नहीं. तनिषा नहीं, एफर्ट्स भी चाहिए होते हैं बट सोचना भी होता है मेरी जान. सो ऑलवेज थिंक द बेस्ट फॉर यू. सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक फ्रॉम द मूवी पटियाला हाउस. स्वीट यू एंड जियो बिंदास मेरी जान.

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
1: कमर्शियल बैंक. योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. डाउनलोड इट टुडे.

0: पुछदे
1: तनिषा।
2: सावी फरीद और साथ में हर्ष नसी, बहुत ही कमाल का बैंड है इनका। और दे हैव कॉट द इंस्टाग्राम एल्गोरिदम का हैक, यू नो, जो भी वीडियो बनाते हैं वो ऐसे ग्रुप में बहुत लो क्वालिटी की वीडियो में जैम करते हुए दे पोस्ट जब भी वो गाना बनाते हैं, और उसके बाद वो गाना रिलीज करते हैं, क्योंकि जब वो लो क्वालिटी वाली वीडियो वो पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, इट गोज वायरल इंस्टेंटली, एंड सबको पता है ये गाना रिलीज होने से पहले एवरीबडी न्यू अबाउट दिस ट्रैक ना पूछ दे। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM, तरीशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर। और ब्लैकबोर्ड स्टोरीज की जगह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सो आज डेविड धवन साहब अपना हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर हम डेविड धवन साहब के लिए सवाल नहीं पूछेंगे, हम उनकी वाइफ के लिए पूछेंगे। सो बेसिकली द क्वेश्चन इज, वरुण धवन की मम्मी को हम क्या कहेंगे? वरुण धवन की मम्मी को हम क्या कहेंगे? मेरे सवाल में ही जवाब है, जरा गौर से सुनिए, वरुण धवन की मम्मी को हम क्या कहेंगे? 3311063 पर फटाफट से बता दो या फिर कॉल कर दो 4441063 पर। एंड स्टेडियो टू रेडियो बिंदास
3: Radio

0: से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है, अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
1: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
0: एंड
1: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
0: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
1: कॉल 7022525।
0: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट Scribbles Gulf on Instagram.
2: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: तनिषा
1: सुनिधि चौहान की आवाज में यारम फ्रॉम द मूवी एक थी डायनी यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है अबर सो मैंने आपसे पूछा था कि वरुण धवन की मम्मी को क्या कहेंगे और मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया गया है. आई गॉट आंसर्स ओवर हियर. इरफान जी का सबसे पहले मैसेज आया है, देन मुझे एसके का मैसेज आया है और किसी के नाम में सिर्फ डॉट है, नाम नहीं है, डॉट का मैसेज आया है. हॉल्ट एचएलटी का मैसेज आया है. देन देयर इज अकरम जी, देयर इज हाय. सो या प्लीज अपना जब भी आंसर भेज रहे हो ना, नाम जरूर लिख दिया करो टू बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है? क्योंकि ये डॉट हॉल्ट ये तो मैं नहीं पढ़ सकती ना, नाम आपके ये तो नहीं है, मुझे पता होना चाहिए किसका मैसेज आ रहा है मुझे. सो भेज दिया करें अपना नाम लिखकर. एंड यस, करेक्ट आंसर इज माधवन. आई नो. देखो ऐसी लाइट और यू नो सिली चीजों से दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन भी ऐसा ही लाइट, फन एंड यू नो फुल ऑफ लाफ्टर और उस एनर्जी के साथ जाएगा. बस इसी की कोशिश है मेरी जान. और बाकी कमाल गाने तो देखो लाइट

वैसे आप कहेंगे कि तुझे तो हरी गाना पसंद है तनीषा। तो सही बात है, मुझे सारे ही गाने पसंद है। वी आर सो लकी टू हैव म्यूजिक इन आवर लाइव्स यार। All these amazing tracks are lined up for you in this hour. लेकिन फिलहाल भेज रही हूँ रेखा भारद्वाज और राघव की आवाज में मुसाफिर कैफे से हम तेरी होते तो। बहुत सुंदर गाना है। Stay tuned on Jio Vindas.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: रश्मीत कौर और सचिन जिगर की आवाज में ठुमकेश्वरी फ्रॉम द मूवी भेड़िया ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है। अब आज थोड़ा बेटर है, ठीक है। मैं लाइक पर तो पूरी तरह से नहीं पहुंची हूँ, पर हाँ ओके, अभी आई एम नॉट लाइकिंग वाली सिचुएशन भी नहीं हो रही है, बिकॉज राइट नाउ द वेदर इज 38 डिग्रीज एंड इट फील्स लाइक 38 आफ्टर सो लॉन्ग। अदरवाइज यही हो रहा था कि अगर 38 है तो आप 48 ही फील कर रहे हो। सो इट इज बेटर टुडे, बट स्टिल इट्स गोना बी हॉट, यू नो। थोड़ा थोड़ा वक्त गुजरने दो, दिन में हॉट हो जाएगा सर। हाईएस्ट विल बी 43 एंड लोएस्ट विल बी 34। आप फिर भी हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए, लाइट खाना खाइए और अपना ख्याल रखिए और भर भर के सनस्क्रीन लगाइए, ठीक है मेरी जान। आप इंपॉर्टेंट हो, आपने अपनी सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखना है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको याद दिलाती रहूँ, और आपकी जिम्मेदारी है कि आपने ये सब करना है। Sending an amazing track your way, Adif Aslam aur Jyothika Tangri ki awaaz mein, Laila Majnu se, Oh Meri Laila, stay tuned on Jio Bindaas.
1: Ab suniye, Olive ka Zabardast hai. Zabardast hai.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

चमेली मूवी से सुनी थी जान की आवाज में सजना में सजना ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. एंड कतर में आने वाला है कतर का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. यस, जो ईवी व्हीकल्स हैं, ईवी इज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ओनली, अभी वो कतर में मैन्युफैक्चर होंगे. एंड दैट इज सच अ ह्यूज स्टेप, यू नो, क्योंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कंट्री में जो भी एडवांसमेंट्स हो रही हैं उसमें ये एक बहुत बड़ा पावर मूव होगा. एंड दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड रिलेटेड कॉम्पोनेंट्स. और ये जो इनिशिएटिव है, इट इज अ पार्ट ऑफ कतर्स पुश टुवर्ड्स क्लीनर एंड मोर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन. यू नो, उसके लिए काफी काम किया जा रहा है. एंड दिस इज वन ऑफ दोज. इट कुड क्रिएट न्यू जॉब्स. ऑब्वियसली बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव सेक्टर में. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट, सुन ली गई है आपकी, जल्द ही कुछ अमेजिंग आने वाला है. एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑल्सो सपोर्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ कतर्स ईवी इकोसिस्टम इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. और वाई दिस मूव इज यू नो सच अ बिग डील, बिकॉज ये डाइवर्सिफाई कर देगा यार जो हमारी इकोनॉमी विच इज बेस्ड ऑन ऑयल एंड गैस, उससे आगे भी नाउ वी विल हैव दिस, यू नो, कि हम ईवी इकोसिस्टम में भी हैं. दैट विल ऑल्सो ब्रॉडर आर इफेक्ट in the economy, and that is really really cool. Looking forward to it and looking forward to this song also jo aane wala hai Javed Bashir sahab ki awaaz mein, slow motion angreja from the movie Bhag Milkha Bhag. Stay tuned on Jio Bindas.

0: Tanisha.
1: Blockbuster in the voice of Zulfi and Farish Shafi only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aapke saath bindaas morning chal raha hai yahan par and yaad dilani aa gayi UG ki back to school is back aur jaldi se register kar lo apne bachcho ko because bahut kam slots hain aur registrations will close soon. So fatafat se jaye radioolive.qa par वहाँ जाए और अपने बच्चे को रजिस्टर कर ले. देर इज़ अ बैनर बैक टू स्कूल का, उस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा. उस फॉर्म में सारी डिटेल्स फिल कर दीजिए. 27th August को हम मिल रहे हैं अबू सिद्रा मॉल में फॉर बैक टू स्कूल बैश दोपहर 3 to 7 PM तक. बहुत सारा फन होने वाला है. क्रेजी गेम्स हैव बीन प्लान्ड, चैलेंजेस, यू नो, डांस, मस्ती, एवरीथिंग विल बी देयर. स्कूल स्टार्ट होने से ये पार्टी, स्कूल स्टार्ट होने से पहले ये पार्टी तो बनती है ना, डिजर्व करते हैं. जी हाँ, तो फटाफट से फॉर्म को फिल करें, रजिस्टर करें. स्पॉट्स आर लिमिटेड. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, डू नॉट मिस दिस आउट मेरी जान.
2: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
3: Gifting partner, Daiso Japan, you name it, we have it.
2: And
3: Doha Center, shop more, pay less.
4: Old Airport Road, Doha and Alcor.
3: Call 70222525.
2: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
5: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
2: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding at the high

0: पीछे बावरा समन बावरा समन। आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। बिंदास डॉक्टर ऑन एयर, डॉक्टर ऑन एयर brought to you by Naseem Healthcare.
1: Hi, I'm Dr. Sarah Ali from Naseem Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
0: Dr. On Air, Dr. On Air, brought to you by Naseem Healthcare.
2: Oh no, फिर से स्कूल।
3: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27th दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
4: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
3: एंड
4: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
3: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
4: कॉल 7022525।
3: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट Scribbles Gulf on Instagram.
0: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: दास मॉर्निंग, दास मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: Guys, this is Jurita Gandhi. Jurita Gandhi. Radio Olive, I'm number one. You are listening to me on Radio Olive. Radio Olive. Gio Bindas. Radio
3: Olive, I'm number one. Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
5: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. डाउनलोड इट टुडे.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडो ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।
3: अखियों

0: enjoy this track, yeah. Ticket to Hollywood. You're listening to Radio Hollywood 106.3 FM. Tanisha, aapke is Bindaas morning chal raha hai ab.
1: Ye hai chalti phirti dictionary.
0: और आज जो मैं वर्ड लेकर आई हूँ डिक्शनरी से वो है ओबिस्क्विस. और जैसे ही मैं इसका मीनिंग बताऊंगी आप लोगों के दिमाग में कोई ना कोई इंसान का चेहरा पिक्चर आ जाएगी और चेहरे पे स्माइल आ जाएगी कि हाँ सही है. सो ओबिस्क्विस की स्पेलिंग है OBSEQUIOUS. ओबिस्क्विस बेसिकली चापलूस. ऑफिस में कौन है बॉस का चमचा? यस दैट पर्सन हूएवर इट इज विल बी कॉल्ड ओबिस्क्विस हु इज लाइक टू ईगर टू प्लीज समवन की भाई गुड बुक्स में रहना है, प्रमोशन तो मेरा ही होगा, सैलरी तो मेरी ही बढ़ेगी. सो बॉस ने जो बोला हर चीज में यस सर यू आर करेक्ट सर सर आप कभी गलत बोलते ही नहीं हो सर. वो वाला जो एक एटीट्यूड होता है ना जिनका, उन्हें कहते हैं कि दे आर टू ओबिस्क्विस. ओ माई गॉड. किसी ना किसी का चेहरा तो आ ही रहा होगा जहन में और चेहरे पे मुस्कुराहट आपके आ रही होगी. बस इस मुस्कुराहट को बरकरार रखिए. फिलहाल भेज रही हूँ सैफ अली खान साहब का फलक तक इन द वॉइस ऑफ उदित नारायण एंड महालक्ष्मी. एंड आज सैफ अली खान इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे. इसी बात पर सुनते हैं उनका स्पेशल ट्रैक. स्टे ट्यून्ड एंड जो

0: का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडू ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
1: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनिषा को बिंदास मॉर्निंग में।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: पिया तो नहीं मैं जरूर आ गई। You're listening to Radio All Over 106.3 FM, तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर। और आज वैक्यू विजडम में एक बहुत ही कमाल की बात करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग। ओके, किस तरह से द स्टाइल ऑफ मार्केटिंग हैज चेंज्ड, एंड वो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट हमें ये महसूस कराते हैं कि तुम्हें इस चीज की जरूरत है इसीलिए हम लेकर आए हैं तुम्हारे लिए, एंड दैट इज ब्रिलियंट यार। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आई एम गोना टेल यू वन एग्जांपल, दैट इज अ कैफे कॉल्ड कैफे पेले। इट वॉज इन यूके, एंड वहाँ पर व्हाट दे डिड, सबवेज में वो बड़े से यू नो एडवर्टीजमेंट, द मोशन एडवर्टीजमेंट दे मेड ऐसे टीवी वाले में या, एंड देयर इज वन गाय जो कि सिर्फ यॉन कर रहा है, उबासियां ले रहा है। ठीक है, आप कम्यूटर्स जब जा रहे हैं वो देख रहे हैं और उबासियों का क्या है, वेन एवर यू सी समबडी यॉनिंग यू विल स्टार्ट यॉनिंग टू, इट इज़ वेरी कंटेजियस समहाउ। सो दैट्स व्हाट हैपेंड, द मैन इज कॉन्स्टेंटली यॉनिंग एट दैट टीवी स्क्रीन, एंड जो भी लोग देख रहे हैं उनका ध्यान जा रहा है और वो ना सेंसर डिटेक्ट कर लेता है, तो जब भी कोई पास से निकल रहा है तब वो और ज्यादा यॉन कर रहा है। सो एवरीबडी स्टार्टेड यॉनिंग और ये चलता रहा, एंड एज सून एज इट डिटेक्ट्स कि भाई बहुत लोग यॉन कर रहे हैं आसपास, तो स्क्रीन पर आ जाता है आई थिंक यू आर रियली टायर्ड, यू नीड अ कॉफी। एंड देन सडनली कम्स अ सेल्स वुमन फ्रॉम कैफे पहले और वो कॉफी के शॉट्स लेकर आती हैं और वो सबको फ्री में कॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। सो बेसिकली दे क्रिएटेड एन अर्जेंसी, एंड देन दे मेड यू फील कि भाई तुम्हें जरूरत थी इसलिए मैं ले आई यार, जबरदस्ती नहीं है कोई, पर एवरीबडी वॉज फीलिंग टायर्ड देयर बिकॉज ऑब्वियसली दे माइट बी कम्यूटिंग फ्रॉम वर्क और कहीं से भी आ रहे होंगे और थके तो ऑब्वियसली होंगे, एंड देन दे स्टार्टेड यॉनिंग, तो हमारे दिमाग में ये चलता है यार आई एम यॉनिंग टू मच, तो मेरे को थोड़ी नैप की जरूरत है, आई जस्ट वॉन्ट टू सिट आइडल फॉर अ वाइल, बहुत ज्यादा कुछ काम कर लिया है, थक गई हूँ आज, यू नो ऑल दोज फीलिंग्स कम अराउंड। सो उस टाइम पे लोगों को बस वही फील कराया गया कि यार आप थक गए हो, आपको कॉफी की जरूरत है, ये आपको एनर्जाइज कर देगी और हम आपके लिए ले आए हैं। दैट इज सो ब्रिलियंट, और उसके बाद जो उनकी सेल्स ऐसे हाइक हुई है क्रेजी तरीके से, अमेजिंग, लव्ड इट। एंड ऑन दैट नोट, सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक, माशुका फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2, बाय द वे मैंने देखी इस वीकेंड, क्यों देखी मत पूछो पर देख ली मैंने। ठीक है यार, स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर। Song of the Year. Yeah, Ghana.

0: फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
1: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
0: एंड
1: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
0: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
1: कॉल 7022525।
0: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
2: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: Tanisha. Tanisha.
1: You're listening to Radio Olympus 6.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं पर पान की दुकान हुए बड़ा ही मजेदार गाना ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM. तनिषा के साथ सुना आपने बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. और भाई कतर पोस्ट ने लॉन्च कर दी है नई मनी ट्रांसफर सर्विस टू इंडिया एंड दिस इज वे मोर फीजिबल देन यू कैन थिंक बिकॉज आप इसके थ्रू डायरेक्टली UPI इनेबल्ड बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं इंडिया में. यस, यस्टरडे वॉज इंडिपेंडेंस डे और उसी दिन लॉन्च की गई है ये जो सर्विस है. कतर पोस्ट ने जो कोलैबोरेशन किया है, पार्टनरशिप किया है विद इंडिया पोस्ट एंड यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU एंड इसके थ्रू आप UPI में पैसे भेज सकते हैं. Cool, right? It's called Post Transfer Service and आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं to send money to your family members in India and it'll become more easier, you know. UPI में instantly आ जाता है and whatever bank account is enabled with UPI, जिन्हें भी आपको पैसे भेजने हैं, बस वो उसकी details feed करें and झटपट सब हो जाएगा मेरी जान. This is amazing. On that note, amazing गाने भी सुन लो जी.
2: क्या बोलती तू?
3: क्या मैं बोलूं?
1: देखते हैं ये क्या बोलते हैं और फिर ये भी आ रहा है.
3: एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत गुम है.
1: उड़ता पंजाब से एक कुड़ी ब्यूटीफुल गाना. एब्सोल्युटली क्रेजी ट्रैक.

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, आई एम राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्टी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: अलका याग्निक और आमिर खान की आवाज में गुलाम मूवी से एक क्या बोलती तू ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है अब टॉक में इंस्टाग्राम की बात करेंगे. सो वीकेंड पे इंस्टाग्राम ने ये किया है, मतलब हमारा वीकेंड था पर उनका नहीं था, थर्सडे को ही कर दिया था ये रात को. इंस्टाग्राम ने अपना जो फॉन्ट है वो चेंज कर दिया इंस्टाग्राम का 10 साल के बाद. एंड ज़करबर्ग खुद आए थे बताने के लिए, मुझे पर्सनली नहीं ऐसे इंस्टाग्राम पे, और फिर एडम मोज़ेरी ने भी पोस्ट किया था उसके बारे में. एंड देन आई वेंट टू दैट फॉन्ट एंड इट एक्चुअली लुक्स रियली नाइस. देर इज़ अनदर ऑप्शन, अगर आप उस इंस्टाग्राम के फॉन्ट पे ऐसे ज़ोर से टैप करके रखेंगे ना तो आपको बहुत सारे न्यू लोगों के ऑप्शंस मिलेंगे, बट वो ऑब्वियसली पेड सर्विस है सो डू नॉट गो फॉर दैट, क्योंकि जो है वो बढ़िया है. एंड लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार ये क्या है, आर के साथ क्या दुश्मनी थी, ये पूरा क्यों नहीं नजर आ रहा है, बट आई काइंड ऑफ लाइक इट. इट्स वेरी क्लासी मिनिमलिस्ट, आई डोंट नो, आई रियली लाइक दिस न्यू फॉन्ट. आपका क्या ओपिनियन है अगर आपने नोटिस किया है तो? बाकी दूसरे ब्रांड्स ने भी शुरू कर दिया है इसके साथ खेलना, आजकल ट्रेंड बन गया ना, किसी एक ब्रांड ने कुछ किया सब उसको फॉलो करेंगे. सो या दैट्स व्हाट्स हैपनिंग, दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर द ट्रेंड. सबने अपना लोगो चेंज नहीं किया है लाइक दैट, बट या इंस्टाग्राम हैज डन. अगर आपने उसको चेकआउट किया है तो आपका क्या ओपिनियन है, कैसा लगा आपको, ये जानना चाहूंगी मैं. 3311 1063 पर स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: Denisha.
1: Himesh Rishamaya ki awaaz mein phir hera bheri se hai meri Zara to be only on radio 11.6.3 FM. Denisha aapke saath bindaas morning chal raha hai yahan par 27th of August, yaad rakho ye date. ठीक है, क्योंकि हम मिल रहे हैं एंड अपने बच्चों को फटाफट से रजिस्टर करवा दो बैक टू स्कूल बैच के लिए. 27 अगस्त को होने वाला है अबू सुद्रा मॉल में दोपहर 3 से लेकर शाम 7 बजे तक. रजिस्टर करने के लिए क्या करना है, बहुत छोटू सा काम है यार. olive.qa, दैट इज आर वेबसाइट, आप उस पर जाइए. वहां पर आपको बैक टू स्कूल का बैनर नजर आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा. उस फॉर्म में आप सारी डिटेल्स फिल कर दीजिए एंड दैट्स इट. यस मेरी जान, बहुत कम स्लॉट्स हैं और बहुत कम वक्त है, तो जल्दी जल्दी रजिस्टर कर लो वरना रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे. फिर आप आके गिला करोगे कि तनीषा ऐसे नहीं होता है यार, तो पहले बता रही हूँ प्लीज कर लो यार. ठीक है, और अगर नहीं मिल रही है वेबसाइट, बहुत ही कष्ट हो गया जीवन में, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो 3311106 पर, मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट भेज दूंगी. ठीक है, आई कैन डू दैट मच फॉर यू यार. प्यार हो यार आप.
2: Venue partner, Abu Sudra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sudra Mall, a complete family destination.
3: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
2: And
3: Doha Center, shop more, pay less.
2: Old Airport Road, Doha and Alcor.
3: Call 70222525.
2: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
4: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
2: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holdings.

Amit Mishra, Shalbaraki Vazmi Bulia from the movie Adila Mushkil, beautiful track only on Radio 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas morning chal raha hai yahan par 9:52 ho chuka hai ji, mere jaane ka waqt ho gaya hai aur Kashish ke aane ka waqt ho gaya hai. Aap apna khayal rakhiyega, jaate jaate yahi kahungi, stay hydrated, लाइट खाना खाएं, सनस्क्रीन लगा कर रखें जब भी बाहर निकलें, और बस अपना ख्याल रखें, आप इम्पॉर्टेंट हैं, इस बात को कभी ना भूलें. एंड इफ़ यू हैवंट फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, radioolive.qa इज़ दी हैंडल, वहाँ पे हम वीडियोज़ वगैरह पोस्ट करते रहते हैं, कॉन्टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं, तो पार्टिसिपेट कर लो, यू नेवर नो, यू माइट विन समथिंग. अलॉन्ग विद दैट, इफ़ यू हैवंट बैक टू स्कूल बैच के लिए अपने बच्चों को रजिस्टर कर लो, olive.qa पर जाने का है, एंड वहाँ जाकर सारी डिटेल्स फिल कर दो और बस हो गया काम. हाँ जी, बाकी सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM. हैव एन अमेजिंग डे टू योरसेल्फ एंड जियो बिंदास मेरी जान.

90s के गानों के साथ शो की शुरुआत कर दी हमने. इससे अच्छी शुरुआत और कैसे हो सकती है यार, आप ही लोग बताइए मुझे. वेलकम जी, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो आरएफ पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की देखो मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ. बाकी आज बहुत सारी बातचीत जो है वो हम करने वाले हैं, बहुत सारे हेल्थ मिथ हैं उन्हें ब्रेक करने वाले हैं, आपके स्ट्रेस को दूर भगाने वाले हैं, आपका ओपिनियन जो है वो जानने वाले हैं हम काफी सारी चीजों पर. बाकी फैशन की और मूवीज की बातें तो होगी हर रोज की तरह. सो आप जो है बस मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए कि फोन उठाइए और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए. आहा, ये तो कविता जैसा हो गया ना. 1063 is my number. 3311063. जल्दी से फोन उठाओ, जल्दी से मैसेज कर दो ताकि मैं जल्दी जल्दी आपके मैसेजेस पढ़ पाऊँ, जल्दी जल्दी मुझ में जो है और ज्यादा एनर्जी आ जाए ताकि मैं आज शो पे आपको और ज्यादा एंटरटेन कर सकूँ. और देखो यार, एंटरटेनमेंट जो है उसकी कमी नहीं होनी चाहिए. बॉडी में ऑलरेडी आयरन की, मैग्नीशियम की और बहुत सारी चीजों की कमी चल रही है, लेकिन एंटरटेनमेंट की कमी ना मेरा दिमाग ना मेरा दिल झेल पाएगा. सो फिलहाल जो है एक अमेजिंग वाले गाने से जो है अपने शो की को आगे बढ़ाते हैं. एंड वेलकम टू द जंगल का एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर. ये गाना सुन के ना अक्सर मुझे पता नहीं क्यों सैलरी की याद आ जाती है. सो ये गाना आप एंजॉय करके आइए एंड उसके बाद जो है हम बातचीत जारी रखेंगे. ये जो है बात करेंगे कि ये जो मौसम है बाहर, क्या ये मौसम ऐसा ही रहने वाला है या इसमें कुछ परिवर्तन होने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड रहिए आपकी कशिश के साथ. फिलहाल ये अमेजिंग वाला गाना एंजॉय कीजिए. एंड क्या दे रही है जियो बंदास.

क्यों थक रहे हो?

0: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:12. दैट इज 10:12. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
3: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन. आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM.

0: यार धड़क मूवी में कुछ अच्छा हो या ना हो लेकिन गाने तो बहुत ही अच्छे हैं एंड इतने ड्रीमी गाने हैं ना, मतलब सच में हर गाने में एक अलग फील है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखो यार, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा, आजकल टेम्परेचर जो है वो फोन वोन से हमें थोड़ा पता चलता है, हमें हमारी गाड़ी जब धूप में खड़ी होती है और उसके अंदर आप पहला कदम रखते हैं तब आपको फील होता है कि यार हमारे खाने को माइक्रोवेव के अंदर जब रखा जाता है तो उसे कैसी फीलिंग आती होगी। बस उतना ही गरम जो है बाहर का तापमान हो रहा है, जितने तापमान पे जो है आपकी चाय गरम हो जाती है बस उतना ही बाहर टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन अलग ये है कि ह्यूमिडिटी बहुत है जिस वजह से फीलिंग जो है वो और ज्यादा गरम गरम है। सो इस वक्त का टेम्परेचर हो रहा है दोहा में 41 डिग्री सेल्सियस, आज का हाईएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है 43 डिग्री सेल्सियस और आज का लोएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है 34 डिग्री सेल्सियस। सनस्क्रीन लगाने की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी एंड एक ही आपके लिए मेरा एडवाइस है कि आप जो है पानी बहुत पीते रहे एंड देखिए धूप से एकदम से जब अंदर आए एसी में तो जो है पानी ना पिए, उससे जो है आपकी बॉडी के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा शिफ्ट आता है, इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। सो सबसे पहले तो कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, तो कि जैसे ही आप बाहर धूप से गर्मी से अंदर आ रहे हैं तो एकदम से एसी में ना आए, थोड़ी देर जो है किसी ऐसी छांव वाली जगह पे जो है खड़े रहिए जहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, आपकी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद नॉर्मल पानी पीना है आपको, एकदम ठंडा पानी नहीं पीना है। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे आप अपनी हेल्थ को जो है वो बचा सकते हैं इस गर्मी के मौसम के चलते। बाकी देखिए कुछ दिनों की बात है, हर वक्त बीत जाता है, ये गरम गरम वक्त भी बीत जाएगा, बच्चों की समर वेकेशन जो है वो भी खत्म हो ही रही है तो समर भी खत्म हो जाएगा। मैं हूँ आपकी कशिश, फिलहाल इस हीट को बीच करने के लिए म्यूजिकल बीच का सहारा ले रहे हैं हम, कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए एंड बाकी आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

ऐसा लग रहा है मैंने ना टाइम ट्रैवल कर लिया है और मैं अपने पापा के जमाने में जा चुकी हूँ, बिकॉज अमेजिंग वाले 90s के गाने जो है वो सुनने को मिल रहे हैं। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑलिस पर मैं हूँ आपकी कशिश, जो आपके लिए लेकर आई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, थोड़ी देर पहले यानी ब्रेक पे जाने से पहले और गानों से पहले हम बात कर रहे थे कि कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, मतलब गाड़ी में बैठने के बाद ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे माइक्रोवेव में बैठ गए हो। लेकिन इस गर्मी से जो है डील करने का एक तरीका है, हाँ ऑफकोर्स मेरे गाने तो है ही, लेकिन साथ में वाटरमेलन जो है वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। अब आप बोलेंगे इसमें क्या नई बात बता दिया आपने, ये तो हमें पता ही है, हम तो रोज वाटरमेलन जूस भी पी रहे हैं। लेकिन देखिए, अब साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया है कि वाटरमेलन इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हीलिंग फूड्स ऑन अर्थ। यानी अगर आप अर्थ पे रहते हैं और आपको मोस्ट पावरफुल फूड के बारे में जानना है तो वाटरमेलन उनमें से एक है। राइट, वाटरमेलन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको गर्मी से बचने में हेल्प करती है। एंड एंशियंट सिविलाइजेशन के टाइम पर वाटरमेलन को फ्रूट से ज्यादा जो है मेडिसिन के तौर पर यूज किया जाता था, स्पेशली गर्मी के टाइम पर। अब वाटरमेलन में जो है कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे वो आपका ब्लड प्रेशर जो है उसको लो कर देता है, आपको कैंसर सेल से बचाता है, एंड आपकी किडनी को भी क्लीन करता है, एंड आपके मसल्स को भी रिपेयर करता है। एंड ये भी सिर्फ जो है एक बार जब आप वाटरमेलन खाते हो उसके बाद ही ये सब होना शुरू हो जाता है। अब साइंटिस्ट का कहना यह है कि आपको 30 दिनों तक अगर आप वाटरमेलन खाते हैं तो आपकी किडनीज जो है वो क्लेंस हो जाएंगी, आपके हार्ट की जो है रिकवरी हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो जाएगा, एंड ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें और बेनिफिशियल हो सकती हैं आपके लिए अगर आप वाटरमेलन जूस जो है वो पीते हैं, प्लस अगर उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला देते हैं एंड लाइम जूस जो है वो ऐड कर देते हैं, तो ये जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एंड स्पेशली अगर आप लंच के बाद इसे खाएंगे तो और अच्छा हो सकता है। अब देखो हर एक इंसान की ना बॉडी अलग होती है, सो हो सकता है कि ये अगर मेरे लिए काम कर रहा है तो आपके लिए नहीं भी करे। सो एक बार ट्राई कीजिए, वाटरमेलन तो फ्रूट है, ज्यादा कुछ आपका जाएगा नहीं, आप एक बार ट्राई कीजिए, एक हफ्ते के लिए ट्राई कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है, एक लाइट फीलिंग जो है वो आनी शुरू हो जाती है, एनर्जेटिक आप फील करने लग जाते हो, मतलब आपके लिए ये वर्क कर रहा है। सो एक बार वाटरमेलन को जो है अच्छे से यूज करके देखो एंड उसके बाद मुझे बताओ कि आपको क्या लग रहा है। बाकी हाइड्रेशन के लिए तो अच्छा है ही, पानी के साथ साथ जो है वाटरमेलन अगर आप खाते रहेंगे तो बॉडी को जो है पानी मिलता रहेगा, टेस्टी पानी मिलता रहेगा। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए एंड आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी, वो बिंदास आने के बाद आपके स्ट्रेस से कैसे डील किया जा सकता है ये मैं आपको बताऊंगी। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: मैं हूँ विवेक आनंद ओबरॉय. You're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
1: Olive सुनो रेडियो नेटवर्क, Qatar's number one Asian radio network.

देखिए, आपने ये तो सुना ही होगा कि किसी अपने फेवरेट इंसान को, चाहे वो आपकी मॉम हो, डैड हो, आपकी पार्टनर हो, उन्हें हग करने से जो है स्ट्रेस काफी कम हो जाता है। लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं तो फिर क्या किया जाए? वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसुस एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब साइंटिस्ट ने जो है ये कहा है कि अगर आप एक पेड़ को हग करते हैं तो आपका स्ट्रेस जो है वो काफी कम हो जाता है एंड गायब भी हो सकता है। ये बिल्कुल सेम है पेड़ों से बात करने के जैसे। बट अगर देखिए, आप पेड़ को हग नहीं कर सकते क्योंकि हाँ, कई बार होता है कि आपके आसपास जो है ऐसा पेड़ नहीं है ना, आप पब्लिक में जाकर किसी पेड़ को हग करेंगे तो यहाँ पे तो आपको यू नो जजी आईज जो है वो मिल जाएगी। सो किसी भी नेचुरल चीज से कॉन्टैक्ट बनाने से जो है आपका स्ट्रेस कम हो सकता है, जैसे घास पे नंगे पैर चलने से आपका स्ट्रेस कम हो सकता है, या बस जो आपके घर के पौधे हैं उन्हीं के पास बैठने से भी आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। सो कुछ ऐसी नेचुरल चीजें हैं जो आप अपने आसपास रख सकते हैं जिससे जनरली आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत कम हो जाएगा या ऐसे नीचे गिर जाएगा। सो बस ये जो है एक बार ट्राई कीजिए, बाकी अमेजिंग गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, इन्हें इंजॉय करते रहिए। आपकी कसूस के साथ स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास। बाकी थोड़ी सी देर में बात होगी फैशन की एंड मूवीज की भी, लेकिन उससे पहले ऑल ऑफ अपडेट्स, एंजॉय कीजिए, स्टे ट्यून्ड।

0: Sometime Trek. Brought to you by Nanat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:11. दैट इज 11:11. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: हाय, मैं हूं सोहाली खान एंड यू आर लिस्टिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
3: I'm in number one, Radio Olive.
4: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: देखिए जी, क्या 90s का फील आ रहा है ना, मतलब एक अलग वाली बात है 90s के गानों में, जो मुझे लगता है आजकल थोड़ा सा नमक जो है वो मिसिंग है। ऐसा नहीं है कि आजकल के गाने बुरे हैं, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन नमक जो है वो थोड़ा सा यू नो मिसिंग है। और कोई बात नहीं यार, ज्यादा नमक जो है वो खाना भी नहीं चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी गजल शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और देखिए, हर रोज आपके लिए कोई एक अमेजिंग सी चटपटी सी रिसर्च मैं लेकर आती हूँ, तो बस रिसर्चर्स के यू नो खजाने से एक और रिसर्च मैं निकाल के लाई हूँ, जहां पर रिसर्चर्स का ये कहना है कि एक ह्यूमन ब्रेन जो है, यानी एक इंसान जो है उसका दिमाग इंसल्ट्स भूलने में जो है 20 साल लगा देता है। यस, नहीं 20 नहीं, 30 साल। ओके, सो 30 साल लगा देता है, एंड कोई भी कॉम्प्लीमेंट जो जब इंसान को मिलता है तो वो जो है 30 दिन भी याद नहीं रख पाता, यानी अच्छी बातें जो है वो 30 दिन में भुला दी जाती हैं, लेकिन दिल को तोड़ने वाली बातें, इंसल्ट वाली बातें जो है ना वो याद रहती हैं 30 सालों तक। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? बाकी इसके पीछे के जो साइंस है वो भी मैं बताऊंगी थोड़ी सी देर में। आप मुझे बताइए 3311063 पर कि क्या ये रिसर्च आपको सही लग रही है। सो बस आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, यस या नो आप लिखकर मुझे भेज सकते हैं 3311063 पर व्हाट्सएप पे। और अगर एक्सप्लेन करना चाहें कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। देखो यार, मुझे तो इस बात से कोई यू नो एक अलग मतलब फैक्ट नहीं लग रहा है, बिल्कुल सही लग रही है रिसर्च। बिकॉज कई बार क्या होता है, सोते सोते अचानक से मैं फुल नींद में हूँ और अचानक से मुझे जो है मेरी 6th क्लास में किसी ने मुझे जो है बोल दिया होता है कि मैम इसने अपना होमवर्क नहीं किया है, और मुझे जो जो फीलिंग आई थी मुझे अचानक से याद आ जाती है और मुझे बुरा लग जाता है। 6th स्टैंडर्ड की बात से बुरा लग रहा है मुझे आज, सो कितना ही बुरा लग रहा होगा, है ना। सो आप मुझे बताइए 3311063 पर मैसेज करके कि यार आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, क्या आपको ये वाली रिसर्च सही लग रही है या नहीं लग रही है। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जितनी भी गर्ली पॉप्स मुझे इस वक्त सुन रही हैं उनके लिए दिल धड़कने दो मूवी से गर्ल्स लाइक टू स्विंग। सो ये गाना एंजॉय करके आओ, उसके बाद बातचीत जो है वो हम जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

गाने तो कमाल कमाल सुन रहे हो. आपका भी बढ़िया है ना कि मस्त ड्राइव करो, गाने सुनो, काम करो, गाने सुनो. मेरा भी बढ़िया है, गाने सुनाओ, काम करो, गाने सुनाओ, काम करो. वैसे एक जो है रिसर्च पे हम बात कर रहे थे कि दिमाग जो है वो इंसल्ट्स को 20 सालों तक याद रखता है लेकिन कॉम्प्लीमेंट को 30 दिनों में भूल जाता है. वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कशिश. शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए जो है हम बातचीत कर रहे हैं. और मैं जो है मेहनत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ. अब देखिए यार, ये कहा जाता है कि नेगेटिव वर्ड्स जो है वो आपके दिल और दिमाग पे ऐसा असर जो है वो डालते हैं कि वो सालों साल तक आपके दिल में, आपके जहन में रहते हैं. एंड जो आप इंसान कभी आपकी तारीफ कर देता है तो वो आप मैक्सिमम 30 दिनों तक यानी एक महीने तक जो है याद रख पाते हो, उसके बाद भूल जाते हो. बिकॉज उसका जो आपके नर्वस सिस्टम पे असर होता है वो उसका इम्पैक्ट अलग होता है. सो अगर किसी ने आपकी तारीफ करी है और आप एक लंबे समय तक खुश हैं, मतलब उस इंसान की बातों का इम्पैक्ट आप पे ज्यादा होता है. एंड इसका अपोजिट होता है इंसल्ट में. अगर आप किसी इंसान को जितना कम जानते हो और अगर वो आपकी इंसल्ट ज्यादा करता है तो आपको और ज्यादा बुरा लगता है रहता है. तो देखो यार, बस यही मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये रिसर्च सही है या नहीं है. कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया है तो आइए इनके मैसेजेस जो है वो पढ़ लेते हैं. वैसे लियाकत जी ने लिखा है यस, रीजन नहीं दिया है पर उन्होंने लिखा है यस, और मुझे लगता है इनका यस ही काफी है. एंड बहुत सारे लोगों ने और भी मुझे मैसेज किया है. सबका कहना वैसे यस ही है कि हाँ देखिए, हम जो है वो भूल जाते हैं अगर कोई हमारी तारीफ करता है, हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, लेकिन अगर बुराई करता है या इंसल्ट करता है तो हमें सालों साल याद रहता है. मैंने जैसे आपको बताया ना मेरा एक्सपीरियंस, एक बार क्या हुआ था कि मुझसे जो है पानी, मेरी बॉटल जो है वो टूट गई थी एंड वो स्कूल में गिर गई थी एंड सब मुझ पर बहुत हंस रहे थे. तो अब मैं जब भी पानी भरती हूँ ना, मुझे वो चीज़ याद आती है. पता नहीं क्यों, मेरी खैर किसी ने ऐसे 1-to-1 पर्सनल इंसल्ट कभी की नहीं है, बट अगर मुझे एक बॉटल की बात से इतना बुरा लग सकता है तो फिर यार किसी और इंसान की बात पे तो बहुत बुरा लगेगा. तो फिलहाल देखिए, ये डू यू नो वाली बातचीत के बाद मुझे ऐसा लगता है डू यू नो वाला जो गाना है वो भी आप लोगों के लिए मुझे प्ले करना चाहिए. इसीलिए हाउसफुल टू का ये गाना जो है आपकी रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए, बहुत फन गाना है, इसे एंजॉय करके वापस आइए. उसके बाद जो है हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे आज एक बहुत ही स्पेशल इंसान का. एक्चुअली आज बहुत सारे स्पेशल लोगों का बर्थडे है, सो उनके बारे में बात करने वाले. सो स्टे ट्यून्ड, और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास.

देखिए दिल से तो गलती हो ही गई, ये समझने की कि 90s में या 90s के पहले जो है जब मूवीज आया करती थी तो वो बहुत क्रिंज होती थी, स्पेशली गोविंदा की और डेविड धवन की। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, अगर आप बॉलीवुड के बहुत बड़े फैन हो और आपको बॉलीवुड कॉमेडीज बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन आज कल थोड़ी सी मिसिंग सी लग रही है, सो आज डेविड धवन जी के बर्थडे पर उनकी तीन सबसे बढ़िया मूवीज, मतलब मेरे लिए जो सबसे बढ़िया मूवीज है जो मैंने देखी है मुझे सबसे अच्छी लगी है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो सबसे लेस क्रिंजी मूवी पे हम बात करेंगे, जिसे आप कभी भी देख सकते हो। सलमान भाई है, कैटरीना है, अमेजिंग गाने हैं, एंड डेविड धवन की मूवी है तो गोविंदा कैसे नहीं होंगे। सो आप जो है पार्टनर मूवी जो 2007 में आई थी ये देख सकते हैं। यस, सोनी दे नखरे सोनी लग दे, यही वाली मूवी है। एंड लव गुरु के रोल में सलमान खान परफेक्टली जो है वो बैठते हैं। एंड एक अनयूजुअल पेयर हमें देखने को मिला था इस मूवी में, जो है कैटरीना का एंड गोविंदा का, मतलब कैटरीना एंड सलमान खान जो है मूवी में है, लेकिन सलमान खान के साथ पेयर ना करके डेविड धवन ने कैटरीना को पेयर किया गोविंदा के साथ। अमेजिंग, पहले आपको लगता है कि यार ये तो ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन अमेजिंग लगती है मूवी बाद में। सो एक बार जरूर से अगर पार्टनर अभी तक नहीं देखी है तो जाके देखो, और देख लिया तो रिविजिट कर लो। उसके बाद 1997 की जुड़वा, जिसका जो है रीमेक बिल्कुल बनाया गया था वरुण धवन के साथ, लेकिन वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, पर आप एक बार जुड़वा देखिए, सलमान खान अमेजिंग, मतलब बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। एंड थर्ड एंड वन ऑफ द अमेजिंग, लाइक वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मूवीज, कुली नंबर वन 1995 की मूवी है, गोविंदा और करिश्मा कपूर, गाने एकदम बढ़िया, कॉमेडी मतलब कॉमिक टाइमिंग अमेजिंग, एंड कादर खान, ओ माई गॉड ही इज अमेजिंग इन दिस मूवी। सो एक बार इस क्लासिक कॉमेडी को जाके जरूर से देखिएगा, एंड बाकी और क्या चाहिए गाइस, आपकी लाइफ में थोड़ी और खुशी ऐड हो जाएगी। एंड डेविड धवन जी को हैप्पी बर्थडे जो है वो हम विश करते हैं इन मूवीज को देखते हुए, क्योंकि देखिए आप इन मूवीज को जितना भी क्रिंज कह लें या जैसा भी कह लें, ये मूवीज वो है जिससे एक वक्त पे बॉलीवुड को पहचाना जाता था। एंड यही है, जब भी आप थके होते हो, आपको डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देखनी, हैवी चीजें नहीं देखनी, आप इन्हीं मूवीज के तरफ लौट कर जाते हो, तो जाओ यार देखो इन मूवीज को। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाओ, एंजॉय करो, और आपकी कोशिश के साथ स्टे ट्यून रहो, कहते रहो जी ओपन दस।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।
0: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स। डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड्स।

देखिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि जितने अच्छे गाने थे इस मूवी में सभी हमने आपको एक साथ सुना दिए। मैशअप्स का सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है कि सारे अच्छे गाने, सारे फेवरेट गाने एक साथ सुनने को मिल जाते हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए दुनिया जहाँ की फन खबरें जो है वो मैं आपको आके सुनाती रहती हूँ। सो एक रीसेंट खबर जो मुझे मिली है उसमें मुझे बहुत हंसी आ रही है एंड बहुत अजीब भी लग रहा है कि यार ये कैसे वक्त में पहुंच चुके हैं हम। सो एक एम्प्लॉय को जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया, फायर कर दिया गया, एंड ये उसके बॉस ने नहीं किया, ये एक एआई ने किया है। यस, सो फर्स्ट एआई बॉस लूना नाम की एक एआई बॉस है, उसने रूल्स बनाए थे कि कोई भी काम पे लेट नहीं हो सकता है, एक दो मतलब मिनट 10-15 मिनट की देरी चलेगी लेकिन आप ज़्यादा लेट नहीं हो सकते एंड ज़्यादा दिन लेट नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि आप हर रोज़ ही 5 मिनट लेट आ रहे हो। सो ये एक एम्प्लॉय डेली कर रहा था, वो डेली लेट हो जा रहा था, तो एआई जो बॉस थी उसने उसे निकाल दिया, मतलब निकाल ही दिया। एटलीस्ट क्या होता है जब ह्यूमन बॉस होता है ना, वो आपकी प्रॉब्लम सुनता है, वो आपको 4 बार जो है वो बताता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम टाइम पे आ जाना, अच्छा अच्छा ठीक है तुम्हारा टाइम बदलते हैं। एआई को कैसे इमोशनली समझाओगे आप, कैसे समझाओगे कि वॉशरूम जो है वो घर में एक ही है और उसके लिए लड़ाई होती रहती है, तैयार होने में इसलिए लेट हो जाता है, कैसे समझाओगे आप। तो बस यही सारी दिक्कतें होती रहती हैं। अब एआई बॉस है, उन्होंने निकाल दिया, उनसे तो लड़ा भी नहीं जा सकता, उनको समझाया भी नहीं जा सकता। तो बस वक्त जो है वो अब ऐसा आ गया है कि अब एआई से जो है डांट खानी बची है। बस मम्मी की तरह एआई भी जो है कुछ दिन में बोल देगी कि बहुत हो गया, फोन रख दो, अब ज्यादा हो रहा है, ठीक है मैं आ गई ना तो बताऊंगी। सोचो यार, ये बोलते बोलते अभी मुझे रियलाइज हुआ कि किसी दिन हमें कोई सामान नहीं मिल रहा हो और हम बोले कि एआई मुझे बताओ मेरा फोन कहाँ है या मेरा फोन ढूंढो, और एआई बोले कि वही रखा है, अगर मैं आई और मुझे मिल गया तो फिर देखना, तो फिर तो कितना बुरा लगेगा ना हमें। चलिए इसी एक थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। कमीज़ का वाला गाना जो है वो आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय करके आइए। उसके बाद एक काम की बात जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे आपको रजिस्टर करना है कि आपको बहुत सारा फन और एंटरटेनमेंट मिल जाए। सो स्टे ट्यून्ड रहिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:11. दैट इज 12:11. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी. नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट. बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, prawns crafted with patience, served with pride. Danadal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhol.
3: ਸਸਿਕਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲ ਆਫ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ.
0: ਆਲਿਵ ਸੁਨੋ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ, ਕਤਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ.

0: गाने का नाम छोटा सा फसाना। अब देखिए यार, एक इंसान की मैं आपसे बात करने वाली हूँ जिसकी लाइफ का भी एक छोटा सा फसाना रहा है, लेकिन उसने हमें इतनी बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया मूवीज दी हैं, एंड इनका जो है एक पर्सनल यू नो कनेक्शन भी है मुझसे। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ गाइज, हाँ मैंने वादा किया था कि कहाँ रजिस्टर करना है एंटरटेनमेंट के लिए, वो आपको बताऊंगी, लेकिन वो थोड़ी देर बाद बताऊंगी। उससे पहले आज किसी का हैप्पी वाला बर्थडे है, उनकी बात कर लेते हैं। सो सैफ अली खान जी का आज हैप्पी वाला बर्थडे है, एंड इन्हें जो है भोपाल का नवाब भी कहा जाता है, एंड मैं भोपाल से हूँ। मैंने इनका भोपाल वाला घर जो है वो देखा हुआ है, जिसको अब रेस्टोरेंट में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। सो एक पर्सनल यू नो पर्सनल वाली फीलिंग आ जाती है कि ओ, हम इस इंसान को थोड़ा एक्स्ट्रा जानते हैं। बाकी अगर सबकी बात करें तो बॉलीवुड में एक बहुत ही अच्छा खासा काम जो है उन्होंने किया है, एंड मैं अगर बात करूँ 2022 के बाद से सैफ अली खान का एक नया जो है रूप हमें देखने को मिला है, जहां पर उन्होंने थोड़े लीग से हटके रोल जो है वो करना शुरू किया, एंड अपना सही पोटेंशियल जो है वो दिखाना शुरू किया है। वरना तारा रंपम, हम तुम और सलाम नमस्ते, ये जो कुछ मूवीज थी ना, इनमें हमने एक जैसा सैफ अली खान को देखा है, एंड वो भी मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। सीरियसली मैं ये मूवीज वापस जाकर जो है देखती हूँ, एंड आपको बताती भी हूँ कि आज जो है मैं ये मूवी देखकर आई हूँ। सो कहीं ना कहीं मुझे सैफ अली खान की हर मूवी जो है वो अच्छी लगी है। टाइम टाइम पर जो उनकी अलग अलग मूवीज हैं वो आती रहती हैं, वो मुझे अच्छी लगती है। एक्सपेरिमेंट करना इंसान नहीं छोड़ रहा है, वो सबसे बेस्ट पार्ट है। एंड सैफ अली खान की अगर इंटरव्यूज की बात करें ना, तो वो बहुत फन होते हैं, बहुत विटी होते हैं। अगर शाहरुख खान के बाद मुझे किसी के इंटरव्यूज बहुत पसंद है तो वो सैफ अली खान के इंटरव्यूज हैं। आप कभी भी जाइए सोशल मीडिया पे, सर्च कीजिए सैफ अली खान के पुराने इंटरव्यू स्पेशली, उसमें वो जेंजी से पहले जेंजी थे, एंड अमेजिंग उनके रिस्पॉन्सेज हैं, फनी विटी। तो एक बार जाके जरूर से जो है देख लेना, एंड हम विश करते हैं सैफ अली खान को अ वेरी हैप्पी बर्थडे। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनने का वक्त हो चला है, तो सोनू निगम की आवाज में एक अमेजिंग वाला ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए, एंड आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑल ऑफ पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं।

0: गुमशुदा का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, गुमशुदा का मतलब होता है लॉस्ट उर्दू में। तो अगर आपको भी आजकल लॉस्ट लॉस्ट सा फील होता है कि यार समर वेकेशन खत्म होने वाले हैं, अब क्या होगा, वापस जाने का तो मन सा नहीं कर रहा स्कूल, या आपके बच्चे जो है वो स्कूल जाने वाले हैं लेकिन उससे पहले उन्हें काफी यू नो ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार अब वापस स्कूल शुरू होने वाले, तो एक बार देखिए फन तो बनता है स्कूल जाने से पहले। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफेयर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए देखो मैं एटलीस्ट कोशिश कर रही हूँ। अब समर वेकेशन जो है वो खत्म होने वाले हैं लेकिन फन जो है वो बाकी है। रेडियो ऑलिफ जो है वो लेकर आया है बैक टू स्कूल बैश अबू सदरा मॉल में इस 27th of August को दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। अब यहाँ पर होगा क्या क्या अगर आप ये पूछने वाले तो मैं बता दूं कि एपिक गेम्स होने वाले, क्रेजी चैलेंजेस होने वाले एंड नॉन स्टॉप, फिर से कहना चाहूंगी नॉन स्टॉप धमाल होने वाला है। एंड स्कूल जाने से पहले एक बार फन जो है वो हम करने वाले हैं सब साथ में मिलके। सो देखिए आप जो है इनरोल कर सकते हैं अपने बच्चों को, आपको ज़्यादा कुछ बहुत मेहनत नहीं करनी है एंट्री के लिए, बस आपको olive.qa पर जाकर जो है बैक टू स्कूल फॉर्म जो है वो फिल करना है। बहुत ही आसान सा फॉर्म है, आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर आपको डालनी होगी एंड उसके बाद हम जो है वो आपको कॉल कर देंगे। लिमिटेड देखिए स्लॉट्स हैं तो जल्दी से अपने बच्चे को एनरोल कर दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं चाहते कि वो फिर बोलेंगे देखिए मेरा फन मिस हो गया और अब मुझे स्कूल जाने का मन नहीं है, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि आप झेल पाएंगे। सो जल्दी से olive.qa पर जाइए, बैक टू स्कूल वाला फॉर्म भर दीजिए और फिर फोन के पास ही बैठे रहिए, इंतजार कीजिए क्योंकि हम आपको जल्दी से कॉल कर देंगे। जल्दी से कॉल जो है वो हम आपको करने वाले हैं। सो बैक टू स्कूल जो है वो आपके लिए लेकर आ गया रेडियो olive।
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
0: तो जी फन करने का एड्रेस आपको बता दिया है। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, तो वॉल्यूम बढ़ाओ और सेट से जो है एकदम चिपक के बैठ जाओ। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए जियो बिंदास।

0: फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
1: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
0: एंड
1: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
0: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
1: कॉल 7022525।
0: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।
2: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स। डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड्स।

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

कॉल मी बेस ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई थी, मतलब आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे, लाइफ मस्त है। लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है। सो मैं यहाँ से चलती हूँ, वही कहूंगी जो हर रोज जाते जाते कहती हूँ कि यार अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, गाड़ी जो है वो धीरे धीरे हौले हौले चलाना, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलना और मुझे याद करते रहना। रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाओ, वहां जाके फॉलो बटन दबा दो, वहां पर आपको सारे आरजेस मिल जाएंगे, हमारा ऑफिस का फन आपको देखने को मिल जाएगा, अमेजिंग कॉन्टेंट आपको वहां पर मिल जाएगा। बाकी अगर याद फिर भी सता रही हो तो 3311063 पर जब चाहो तब मैसेज कर सकते हो, मैं तो पढ़ ही लूंगी यार। फिलहाल देखो ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो आपको मैं सुना रही हूँ, वही गाना है जो अक्सर आपके मन में आता होगा मुझे सोचने के बाद कि क्या कमाल लड़की है यार, ये क्या कमाल है। सो स्टे ट्यून्ड रहिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास, तारा बाय बाय।

0: 106.3 FM.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: फिर से स्कूल?
1: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27th दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है. अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है. स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर. मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में. वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
3: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
1: एंड
3: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर.
3: कॉल 7022525.
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
4: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: on Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.
1: आप सुन रहे हैं Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: हर दोपहर 2 से 5 विथ आरजे सुबे रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। यह है रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बांध रखिए तो कसके बांध लीजिए, क्योंकि यहां पे हम किक स्टार्ट करने वाले हैं ऑलिव रिचार्ज को। बहुत सारी बातें करेंगे, किससे सुनाएंगे, खबरें शेयर करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है। और यही बोलते हुए चलिए ऑलिव रिचार्ज को शुरू करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और देखिए, एक चीज मैं जानता हूं, मानता हूं और मुझे पता है कि सही में अगर इस एक दुविधा का कोई एक समाधान होता तो लाइफ थोड़ी और बढ़िया हो जाती। ठीक है, ऑफिस से घर तक का कम्यूट या फिर घर से ऑफिस का कम्यूट सही में बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। कभी कभी अगर ट्रैफिक ज्यादा रहता है तो मूड भी खराब हो जाता है, वक्त भी निकल जाता है, दिन भी निकल जाता है, कुछ कर भी नहीं पाते। और बहुत लंबा कम्यूट अगर आपका रहता है होम टू वर्क और वर्क टू होम, तो फिर दिक्कत थोड़ी रह जाती है क्योंकि ये ऐसा टाइम है जो हमें नहीं मिल पाता वापस। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, अपने ऑफिस के पास ही शिफ्ट हो जाते हैं। और एक जगह पे मैंने ये भी पढ़ा था कि ये ऑफिस से घर का कम्यूट जो है या फिर घर से ऑफिस का कम्यूट जो है, ये सही में एक बहुत ही साइलेंट तरीके से हमारा टाइम जो है छीन लेता है। और इसलिए इसके बारे में लोग बहुत डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई ऑफिस जो है अपना वर्क टाइम बढ़ा देता है तो उसके हिसाब से उन्हें अपने निकलने का वक्त भी बदलना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें इन्वॉल्व हैं जो ऑब्वियसली कंपनी को तो समझ में आएगी नहीं। बट हाँ, मगर स्विट्जरलैंड में एक काफी बढ़िया तरीका मैंने देखा, उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। अब यही बात करते हुए मैसेजेस कीजिए, गाने सुनिए, चिल करिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

आप सभी का फिर से एक और बार इस्तकबाल है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे थोड़ी देर पहले हम ऑफिस से घर जाने का, फिर घर से ऑफिस जाने के कम्यूट के बारे में बात कर रहे थे। तो स्विट्जरलैंड में एक सिटी है बेसिल करके, ठीक है। उस सिटी में राइन करके एक रिवर जो है फ्लो करती है, और उस सिटी के ऑक्यूपेंट्स जो है, जो वहां पे रहते हैं, वो जब अपने ऑफिस से घर जाते हैं तो कभी कभी क्या करते हैं, एक वाटरप्रूफ बैग में अपने कपड़े अपने सामान सब रख के उसको यूज करके राइन रिवर में जो है खोज जाते हैं, और उसके थ्रू रिवर के फ्लो के थ्रू एक दूसरे पॉइंट पर जाके वापस जो अपना कम्यूट कंटिन्यू करते हैं, कैरी ऑन करते हैं। तो यानी कि नेचर का यूज करते हुए एक लेजर भी हो रहा है, स्विमिंग भी कर रहे हैं, हेल्थी भी है, फन भी है। बट इसमें बहुत सारे कैचेस हैं, ठीक है। राइन रिवर जो है काफ़ी पावरफुल फ्लो वाला एक रिवर है, तो अथॉरिटीज़ ने सेफ्टी इंश्योर करने के लिए बहुत सारे कंडीशंस रखे हैं, एंट्री पॉइंट्स और एक्सिट पॉइंट रखे हैं। इसके आगे जो है लोग क्या करते हैं, ज़्यादा डेंजरस रिस्क ना लेकर के। बट anyway, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका लगा। एक तो लोग ना बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे के साथ बात करते हुए या फिर चिल करते हुए, एंड इट्स अ गुड फिजिकल एक्टिविटी। स्विम करना बहुत ही बढ़िया एक एक्टिविटी है जो आपके पूरे दिन के स्ट्रेस को भी अच्छे से रिलीफ कर सकता है। और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

वीएलसी है एक बहुत बड़ी मिसाल जो मुझे लगता है कि सबको फॉलो करना चाहिए। हम सब जानते हैं वीएलसी हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने लाइफ में यूज किया होगा, कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में गाने प्ले करने के लिए। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो वीएलसी ने एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम जो है सॉल्व किया था। कभी कभी गाने या फिर कोई भी म्यूजिक रिलेटेड या फिर वीडियो रिलेटेड फाइल प्ले करने के लिए हमारे सिस्टम में कोडेक जो होता था उसके लिए रिक्वायर्ड वो नहीं होता था, बट वीएलसी ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और वीएलसी के जो ओनर हैं जॉन करके, उनको बहुत सारे लोगों ने ऑफर दिए, मिलियंस ऑफ यूरोज का ऑफर आया कि चलो इसे मोनेटाइज करते हैं, इसमें एड्स लगाते हैं या फिर ये करते हैं, बट उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ये जनता के लिए है, ये ओपन सोर्स रहेगा, इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आएगा और बेसिक फीचर के लिए लोगों को एक प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। विच इज सच अ रिफ्रेशिंग थॉट इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि यार लोग कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ निकालते हैं और एकदम से उसे मोनेटाइज करने लग जाते हैं। ठीक है, मैं ये जरूर मानता हूं कि कभी कभी R&D के लिए या फिर चीजों को आगे बढ़ाने के लिए कॉस्ट की जरूरत लगती है, इसलिए पैसा हम बना सकते हैं उसमें, बट एक बहुत ही अच्छे थॉट के साथ या फिर एक बहुत ही अच्छा आइडिया के साथ अंधा पैसा बनाना, लोगों को अंधेरे में रखना, इट्स नॉट समथिंग दैट आई सजेस्ट। और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: चार्ज हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو اولیو 106.3 FM جیو بنداز.
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
4: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

0: 14 साल की उम्र में एक टेक्नोलॉजी कंपनी में उन्होंने ज्वाइन किया, मगर शायद कभी सोचा नहीं था उनने भी या फिर किसी ने भी कि इतना वक्त इस कंपनी में गुजारेंगे। मैं बात कर रहा हूँ क्रिस एस्पिनोसा के बारे में, जो 1976 से लेके अभी तक एप्पल का हिस्सा है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। ये एप्पल के लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्प्लॉय हैं, और सोच के देखिए को फाउंडर स्टीव वॉजनियाक ने तक एक पॉइंट में जो है एप्पल छोड़ दिया था, और इस टेक्नोलॉजी लेजेंड के साथ जो है इन्होंने हिस्ट्री बना दी है क्रिस एस्पिनोसा ने। 50 साल से ये वहीं पे काम कर रहे हैं। जब स्टार्टिंग में इन्होंने ज्वाइन किया था, डॉक्यूमेंटेशन का काम करते थे, टेक्निकल और सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन करते थे, लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में समझाते थे, एंड इस कंपनी में सबसे ज्यादा वक्त इन्होंने बिताया है। और काफी कूल लगा यार, मतलब जब हम लॉयल्टी की बात करते हैं, लेगेसी की बात करते हैं, तो ऐसे एग्जांपल्स सही में बहुत बढ़िया तरीके से जो है हमारे सामने आते हैं। बट ऑब्वियसली एप्पल जो है बहुत ही अच्छे से मॉनिटरली रिवॉर्ड भी करता है, स्टॉक ऑप्शंस देता है अपने एम्प्लॉयज को, एंड उसके बाद भाई वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक, इनोवेशन का दूसरा नाम है एप्पल। और ये बात बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
2: अभी

0: से स्कूल।
1: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ ऑन इंस्टाग्राम।
3: पिज्जा पार्टनर पापा जॉन्स, ऑर्डर अर्न रिपीट विद पापा रिवॉर्ड्स। डाउनलोड पापा जॉन्स ऐप एंड एंजॉय मोर रिवॉर्ड्स।
1: रिफ्रेशमेंट पार्टनर अल वाजबा डेयरी एंड अल शमाल प्योर ड्रिंकिंग वाटर, distributed by Gulf Center Holding.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे भाई मैं याद दिला रहा हूँ कि सीधा जाइए रेडियो ऑलिव के वेबसाइट में, विच इज olive.qa। वहां पे एक बैनर दिखेगा बैक टू स्कूल का, उस पर क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, रजिस्टर कीजिए, क्योंकि आपके पास मौका है बैक टू स्कूल बैच का हिस्सा बनने का, जो होने वाला है 27 अगस्त को अबू सिद्रा मॉल में। तो मैं यही बोलूंगा, जाने की इंतजार किस बात का है। स्कूल खुलने से पहले एक वन लास्ट एंजॉयमेंट, फन, थ्रिल इवनिंग जो है आप एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया गिफ्ट जीत सकते हैं। तो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले हमारे पास भेजिए भाई, मजे करवा के ही भेजेंगे। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: New partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And Doha Center, shop more, pay less.
3: Old Airport Road, Doha and Alcor.
1: Call 70222525.
4: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
5: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
6: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding at

भाई अभी मेरे मन में एक गाना आ रहा है, गाना है मोहब्बतें मूवी का, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, मगर ये बंदा रुका नहीं और उसको रिवॉर्ड भी मिला। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं बात करने वाला हूं वॉल्टर कार के बारे में, जो एक एम्प्लॉय हैं बेल हॉब्स करके कंपनी, जो एक मूविंग कंपनी है अलबामा में, और उनका फर्स्ट डे ऑफ जॉब वो निकलते हैं गाड़ी लेकर घर से, मगर कुछ दूर चलते ही गाड़ी जो है खराब हो जाती है और वो बंदा रुकता नहीं है, वो चलने लग जाता है भाई, चलता है चलता है चलता है चलता है और फाइनली वो पहुंच जाता है। अब आपको लगता है कि भाई इससे बड़ी बात क्या है, ये तो छोटी चीज है ना। अब देखिए, उन्हें और कोई राइड उस टाइम पे मिल नहीं रहा था, बट ही वॉज डिटरमाइंड टू शो, तो उन्होंने चलना शुरू किया और उन्होंने चलते चलते चलते बहुत लंबा एरिया कवर किया, ऑलमोस्ट 20 माइल्स तक वो चलते गए। एंड फाइनली जब वो पहुंचे तो उनके बॉस ने जो है उनके डिटर्मिनेशन को देखकर खुश होकर उसको एक गाड़ी दिलाई। मैं बस यही बोल रहा हूं कि बॉस अगर आप मुझे सुन रहे हो तो अगर हमारी गाड़ी खराब हो जाती है तो कोई टेंशन नहीं, मैं चल के ही आऊंगा, मगर आऊंगा जरूर। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबेर, रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर, जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और कुछ दिन पहले जो है रोनाल्डो की शादी हुई, उसके बाद जो है रोनाल्डो के बहुत सारे वीडियोस जो हैं ऐसे आने लग गए, वो कैसे लोगों के साथ बात करते हैं। तो एक बहुत ही पुराना वीडियो फिर से जरा सरफेस हुआ है। जापान में जब रोनाल्डो गया था तो वहां पे एक जापानीज लड़का, 13-14 साल का एक जापानीज लड़का जो है टूटी फूटी पोर्चुगीज में उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और लोग हंसने लग गए थे। तो रोनाल्डो ने बोला कि आप हंस क्यों रहे हो, वो कोशिश कर रहा ना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें ना एक बहुत बड़ा सच जो है छुपा है समाज के बारे में, ठीक है। अब हम हमारे कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, सब कॉन्टिनेंट के लोगों के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर हमारे आसपास में कोई इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहा है और उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो हम जज करने लग जाते हैं या फिर हंसने लग जाते हैं, मजाक उड़ाने लग जाते हैं। मगर अगर एक जर्मन बंदा, एक जापानीज बंदा या फिर कोई भी नेशनैलिटी वाला बंदा अगर अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में कुछ भी बोलने की कोशिश करता है तो हम उनका मजाक नहीं उड़ाते, हम उन्हें एनकरेज करते हैं, अरे कोई बात नहीं करके। यही एनकरेजमेंट हम अपने लोग के साथ क्यों नहीं दिखाते? सब कॉन्टिनेंट के जितने भी लोग हैं, हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के लोग हैं, जब कोशिश करते हैं इंग्लिश में बात करने की, और देखिए नेटिव लैंग्वेज तो है नहीं हमारी है, फिर भी जब भी हम उसमें बात करने की कोशिश करते हैं तो जो जानते हैं हमारे ही अपने लोग वो जज करने लग जाते हैं। तो ये एक रवैया मुझे पसंद नहीं आया। और सही में रोनाल्डो से हमें सीखना चाहिए कुछ। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Say what?

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Shackman की पावर पैक्ड रेंज हैवी ट्रक्स टिपर्स ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ
1: हाय रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर दिस इज शाहरुख खान
2: हाय दिस इज अजय देवगन
3: हाय दिस इज अक्षय कुमार
4: हाय दिस इज अनुष्का शर्मा
5: एंड आई एम अर्शद वासी
6: दिस इज रणवीर सिंह स्टे ट्यून्ड

0: भाई कभी कभी मुझे ना बहुत जलस महसूस होता है, क्योंकि मेरे टाइम पे बैक टू स्कूल नहीं होता था, और हमको बैक टू स्कूल जाते वक्त बहुत ही ऐसा लगता था कि यार हॉलीडे होमवर्क तो किया नहीं, स्कूल जाना पड़ेगा ये सब। मगर यहाँ पे बच्चों के लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बैक टू स्कूल बैच जो है फिर से आने वाला है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो 27 अगस्त को होने वाला है बैक टू स्कूल बैच अबू सिद्रा मॉल में, तो इंतजार किस बात का है, सीधा जाइए रेडियो ऑलिव के वेबसाइट में विच इज olive.qa, वहां पे जाइए, उस बैनर पे क्लिक कीजिए और फॉर्म फिल कीजिए। सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को मौका मिलेगा बैक टू स्कूल बैच का हिस्सा बनने का, जहां पे फन होगा, गेम्स होंगे, बहुत ही बढ़िया एक शानदार इवनिंग होगा जहां पे हम मजे करेंगे भाई। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर, प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: हमने लगा और हो जा रिचार्ज.
2: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर. जियो बिंदास.
1: ऑलिव रिचार्ज.
3: This hour is brought to you by
0: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे याद दिलाना चाहूंगा मैं आपको कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो जानी क्या किया ये, हा? सीधा जाइए रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज पर, इंस्टाग्राम खोलिए radioolive.qa, सर्च कीजिए। अगर वहां पे फॉलो बटन दिखाई दे रहा है फॉलोइंग की बजाय, तो फॉलो बटन दबाइए, एक ही बार दबाना है। और आप हमारे कंटेंट चेकआउट कर सकते हैं, पोस्ट चेकआउट कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अभी हमें सुनते हुए स्टोरी भी डाल सकते हैं, स्टोरी भी हम रीशेयर करेंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे पेज पर आते हैं, तो आपके पास प्राइजेस जीतने के मौके भी हैं। और यही बात याद दिलाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: लगा और हो जा रिचार्ज।
1: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
4: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पांसिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाबा गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं, 3 घंटे खत्म होने वाले हैं, मेरा वक्त यहाँ पे खत्म हो रहा है। मगर कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं, फिर मिलेंगे कल दोपहर को 2 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और दुआओं में हमें याद रखिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

तभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

लो दोस्तों, आ गया है संडे और हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है। जब वीकेंड के बाद जब छुट्टी खत्म हो जाती है, जब आप ऑफिस आते हैं, तो किसी ने आपका दिमाग तो खराब नहीं किया? वैसे अगर हफ्ते के पहले दिन में कोई आपका दिमाग ना भी खराब करे, आधा तो आपका अपने आप ही रहता है कि और छुट्टी खत्म हो गई है, एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है, राइट? सो 3311063 पर आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस भेजो और कुछ भी बताना चाहो अपने बारे में, कुछ शेयर करना चाहो, कुछ वेंट आउट करना चाहते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। नंबर वही है 3311063। सिमरन कौर आपके साथ, मैं क्या जी जियो बिंदास। कल मैंने एक ऐसा काम किया जो कि मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे रिग्रेट नहीं हुआ। फिर क्या, थोड़ा सा इंतजार कर लो यार।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. Experience more with ओरिडू.
2: Hi Radio Olive.
3: Radio Olive.
2: 106.3 listeners. This is Shahrukh Khan.
3: Shahrukh Khan. I'm in number
4: one. Radio Olive. Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ.
7: Zabardast evening make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

0: सो फाइनली मैंने कल एक ऐसा काम किया जो कि शायद मैं अवॉइड कर रही थी, पता नहीं क्यों, बट यस। फिल्म देखी आवारा बंडू। आई नो इमरान हाशमी की फैन मैं भी हूँ, बहुत ही कमाल के कलाकार हैं, लेकिन somehow मेरा ना आवारा बंडू देखने का मन हो नहीं रहा था। तो मेरा और मेरे दोस्त का एक ऐसा सीन है कि मैं उसके साथ वो मूवी जाऊंगी जो सिर्फ उसका मन है, चाहे मेरा मन है नहीं है, और वो मेरे साथ एक बार एक ऐसी मूवी जाएगा जो कि सिर्फ मेरा मन है और उसका नहीं है। तो कल उसका मन था कि यार आवारा बंडू देखनी है, आई एम लाइक ठीक है यार, मैं जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ गई थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। यार आवारापन टू फिल्म काफी ज्यादा अच्छी है। आप जो लोग ये बोलेंगे कि यार हमने आवारापन वन नहीं देखी थी या फिर हम भूल चुके हैं उससे, इस फिल्म का कोई लेना देना नहीं है। स्टार्ट में आपको थोड़ा सा एक झलक जो है वो आवारापन वन की मिलेगी, लेकिन जो फिल्म फिर होती है वो अलग ही लेवल पे जाती है। और अलग ही लेवल पे देखो, इमरान हाशमी तो लेके गए, लेकिन एक कैरेक्टर था उसमें जोरावर, जो कि विलेन था इस फिल्म का, और उसका पूरा नाम जो है वो पूरन गब्बी है, जो कि मैंने बाद में सर्च किया। मैंने उनसे पहले उनका कोई भी एक्टिंग जो है वो नहीं देखी थी किसी भी फिल्म में, एंड मुझे पता भी नहीं है उनके बारे में। जब मैंने फिल्म देखी, भाई साहब वो बंदे ने पूरा का पूरी की पूरी फिल्म के ऊपर जो है ना वो पूरा राज किया है। मतलब जब भी वो बंदा स्क्रीन पे आता था उसको स्क्रीन टाइम भी बहुत अच्छा खासा मिला हुआ है, इमरान हाशमी जितना। तो उन्होंने, मतलब मैं इमरान हाशमी से एक्सपेक्ट करके गई थी, उन्होंने तो किया, लेकिन इसमें जो जोरावर ने कैरेक्टर किया, भाई साहब तालियां यार, बहुत ही मजेदार। अगर आपने आवारापन टू देखी है तो आप समझ रहे होंगे, अगर आपने नहीं देखी है तो गो एंड वॉच यार, अच्छी फिल्म है, मजा आएगा आपको, रिग्रेट नहीं होगा। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: स्कूल।
1: अरे समर वेकेशन खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: है दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: इश्क बबुआ।
1: समर वेकेशन खत्म होने से पहले आपके बच्चों को हमारे हवाले कर दो। आपके साथ, क्योंकि अब ये समर वेकेशन का फेयरवेल जो है हम करने वाले हैं बैक टू स्कूल बैच के साथ, जो कि होने वाला है अबू सिद्रा मॉल में इस 27 अगस्त को दोपहर 3 से लेकर रात के 7 बजे तक, यानी कि शाम के 7 बजे तक आपके बच्चों के साथ बहुत सारी गेम्स खेलेंगे, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारा फन जो है वो होने वाला है। एक बार जिससे पहले मतलब स्कूल स्टार्ट हो उससे पहले फुल ऑन फन करवा देंगे। बट उसके लिए क्या करना होगा, बैक टू स्कूल के लिए आपको, बैक टू स्कूल बैच के लिए आपको रजिस्टर करवाना होगा। सो स्पॉट्स बिल्कुल लिमिटेड है, फिर जल्दी से जल्दी जो है ये स्पॉट्स फिल हो रहे हैं, फिर बाद में मत कह देना कि यार हमारा चांस नहीं लगा। तो हम आपको बता रहे हैं बार बार, olive.qa पे जाके बैक टू स्कूल के लिए आप फॉर्म फिल कर दीजिए और इस तरह से खुद को रजिस्टर करवा लीजिए और फिर इंतजार करिए कॉल का कि आप में से कौन कौन आ रहा है।
2: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
3: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
2: And
3: Doha Center, shop more, pay less.
2: Old Airport Road, Doha and

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM. Shackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

अभी मैं आपको एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चेक जो है आपकी इंस्टाग्राम के लिए बताने वाली हूँ। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो मेरे साथ साथ ना अपना इंस्टाग्राम ओपन करिए। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद ये जो राइट साइड में थ्री लाइन्स आती है उस पर क्लिक करके आपको जाना है अकाउंट सेंटर में। जी हाँ, अकाउंट सेंटर में जाने के बाद पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाइए। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाके आप सबसे नीचे जाएंगे जहां पे सिक्योरिटी चेक्स है, वहां पे लिखा होगा वेयर यू लॉग्ड इन। सो वहां पर आपको दिख जाएगा कि कहां कहां पे आपका जो अकाउंट है वो लॉग्ड इन हो चुका है। और अगर आपको लग रहा है किसी अनोन जगह पे आपका अकाउंट लॉग इन हुआ है तो प्लीज उसको लॉग आउट कर लीजिए और सेल्फी वेरिफिकेशन वाला फीचर जरूर ऑन करके रखिएगा ताकि कोई और आपके अकाउंट का मिसयूज जो है वो ना कर सके। सो मेक श्योर कि आप इस चीज का ध्यान रखें। सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास।

सीन हमारे इंडिया में भी होना चाहिए भाई, ओवरफ्लो हो जाएगा। उनके लिए कैचअप करने के लिए मार्केट लगती है, टू शेयर मेमोरीज और यू नो रिस्पेक्ट देयर पास, जिनका मतलब अच्छे वाला एंड हुआ है रिश्ता, कि आपको एक दूसरे से जो है वो कोई गुस्सा नाराजगी नहीं है। सो हर साल ये जो है लव मार्केट लगती है, जहां पर अब आप अपने एक्स के साथ मिल सकते हो, आप अपने पार्टनर के साथ भी आ सकते हो, क्योंकि आपके दिल में अगर कुछ गलत नहीं था और ठीक है नहीं बनी तो नहीं बनी, लेकिन आप अपनी लाइफ में अब क्या कर रहे हो, पुरानी मेमोरीज को शेयर करके ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ भी कुछ रिश्ते जो है वो खत्म होते हैं, जिसमें ये है कि आपका कोई ऐसा बिट्रेयल वाला सीन जो था वो नहीं रहा था। तो ये जो है दिखाओ वाई लव मार्केट वियतनाम में बहुत ज्यादा फेमस है, साल में एक बार ये मार्केट लगती है, तो यार माहौल तो बन जाता होगा। जैसे इंडिया में बात करें, जब वैलेंटाइंस डे आता है तो पेरेंट्स की नजर रहती है ना, कि यार आज के दिन बच्चे अगर बाहर जाने तो पूरा ध्यान होता है, तो पार्टनर की नजर भी रहती होगी यार, ये वाली मार्केट जब आती होगी। सो यार सुनते रहिए रेडियो वाले को, कहते रहिए जियो बिंदास। इंडिया में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मुझे लग रहा, भाई साहब अलग लेवल का सीन हो जाएगा फिर।

0: सो क्या है आज के मौसम के हाल, चलिए चेक करके बताती हूँ। सुना देते हैं टेम्परेचर जो था वो मतलब फील्स लाइक 48 डिग्री हो गया था। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर है 46 डिग्री सेल्सियस बाय द वे, एंड ह्यूमिडिटी है 31% और मिनिमम है 34 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ह्यूमिडिटी की बात करें सो 7 बजे के अराउंड 53% ह्यूमिडिटी होगी, या 9 बजे के अराउंड 59% ह्यूमिडिटी दिखा रहा है, और रात के 11 बजे 61% ह्यूमिडिटी, और लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग जो है 70-75% जो है वो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। सो ह्यूमिडिटी ही जो अभी मेन विलन बनी हुई है इस वेदर का। सो या पानी वानी पीते रहिए, ध्यान रखिए अपना। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिफ पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: एक और जेंजी स्लैंग को डिकोड करते हैं।
1: जेंजी
2: जेंजी
1: अच्छा
0: जी
1: क्या?
0: हाँ जी सुनियो की दादी हलचल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ। मान लीजिए कि लाइक किसी चीज से आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, लाइक आई एम सो ऑब्सेस्ड विद इट, अगर आप उसको जेंजी स्लैंग में बोलोगे दैट्स सो ब्रेन रॉट, यस आप इसको नेक्स्ट टाइम जो है वो यूज कर सकते हैं अगर आपको जेंजी स्लैंग्स जो है वो काफी ज्यादा कूल लगती है, लेकिन होती तो है बट जैसी वो दिखती है ना वैसे वो फील मतलब आपको नहीं समझ लगता है, उसका मतलब कुछ और ही निकलता है। सिमरन कौर आपके साथ, मैं गजीत जी हूं बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: आजकल जो एक चीज वायरल हो रही है, चीज नहीं एक्चुअली एक इंसान वायरल हो रहे हैं.
1: रेडियो ऑलिव पर व्हाट द वायरल क्या बात है, आरजे सिमरन के साथ व्हाट द वायरल ये बात है.
0: हां जी, और आजकल एक भोजपुरी सिनेमा के और बॉलीवुड सिनेमा के जो एक्टर है रवि किशन, वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं भाई साहब. एक तो उनका नाचने का स्टाइल, एक उनकी बातें करने का स्टाइल, जल्दी द लेट ओके. और रिसेंटली जब वो एक शो पे, उन्होंने एक पॉडकास्ट पे, राज शमानी के पॉडकास्ट पे जो कुछ बोला वो भी बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है. यार पागल तो मैं बना दूंगा. माय गॉड. सो अगर आपने अभी तक रवि किशन के वो वायरल डांस वीडियो या फिर उनमें जो जो भी वो बोलते हैं वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप सोशल मीडिया क्या देख रहे हो यार. मत ट्रेंड कर रहा है बंदा यार. सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास.
1: रेडियो

0: Ilog. Suntehen number one radio station. Radio Olive. 106.3 FM.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.

जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं वो फिल्म का नाम है खामोशी। जिसमें नाना पाटेकर, मनीषा कोइराला, सलमान खान, हेलेन, बहुत सारे कैरेक्टर जो थे। सो खामोशी फिल्म बहुत ही प्यारी फिल्म थी, अगर आपने नहीं देखी है अभी भी आप देख सकते हैं। सो या ये फिल्म की बात करें तो सेम ईयर जिसमें नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला में यहाँ पे फादर एंड डॉटर का रोल किया था, सेम ईयर उन्होंने अग्निसाक्षी में हस्बैंड एंड वाइफ का रोल भी किया था। हेलेन ने इस फिल्म में रोल के लिए इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि सलमान खान जो उनके स्टेप सन है उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि यू नो इस फिल्म में आपको काम करना है। लेकिन ये पहले संजय लीला भंसाली थी ना, वो चाहते थे कि ये रोल जो है वो माधुरी दीक्षित करे, और लेकिन माधुरी दीक्षित ने समहाउ इस फिल्म के लिए रिफ्यूज कर दिया। लेकिन फिर भंसाली के पास और ऑप्शन ही रहा, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है इस फिल्म में मनीषा कोइराला जो है वो काम करने वाली है। और भी इस फिल्म से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें मैं आपको वापस लौट के बताऊंगी। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: हाँ जी मैं कह जी सुनियो किदा दे की हाल चाल, म्यूजिक किधर है यार, इसके बगैर मजा नहीं आता। वो अपने बच्चों के साथ जाके डोर टू डोर जो है वो सामान बेचती है, राइट। सो ये सीन जो था वो एक्चुअली संजय लीला बंसाली की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड था, कि बचपन में वो भी अपनी सिस्टर के साथ, अपनी माँ के साथ डोर टू डोर सामान जो थे वो बेचने जाते थे। एंड सुतापा सिकंदर जो कि इरफान खान की वाइफ थी, और उस टाइम पे ये फिल्म के राइटर के तौर पे जो थे वो काम कर रही थी, और अपने हस्बैंड इरफान खान को जो थे वो पुश कर रही थी ताकि फिल्मों में उनको रोल जो है वो मिल सके। सो नाना पाटेकर ने उसका एफर्ट जो था वो नोटिस किया, और उसने बोला सुतापा को कि सिकंदर, यू नो जो इरफान है वो एक दिन बॉलीवुड में बहुत बड़े स्टार जो है वो बनने वाले हैं। सो या इस फिल्म से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं करती रहूंगी, आप सुनते रहोगे, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है यार। सिमरन कौर है आपके साथ, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Olive 106.3 FM Gio Bendaz.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: दोस्त ऐसे भी होते हैं।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: बिल्कुल लेकिन जैसे ही आपको जरूरत होगी, जैसे ही उनको पता लगेगा, द मिनट दे नो कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, भाई साहब वो आ जाएंगे, वो किसी तरह से भी अपीयर हो जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम को वो हल कर देंगे। लेकिन यार ऐसे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बट मुझे लगता है कि जब कोई दोस्त आपका आपको हेल्प की जब जरूरत है तब वो आ जाता है। ऐसे दोस्त के साथ कनेक्शन बना रहना चाहिए ताकि सिर्फ उसको तब ना पता लगे जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपको तब पता लगे जब उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, ताकि आप उसके लिए आके खड़े हो सको, स्टैंड ले सको। लेकिन कुछ होते हैं ऐसी प्रजाति जिनको अपनी लाइफ में क्या चल रहा है वो नहीं बताना, लेकिन आपके दोस्त की लाइफ में अगर कुछ घट गया तो भाई वो कुछ भी करेंगे आपके लिए, लेकिन नॉर्मल डेज में वो आपका फोन भी नहीं उठाएंगे, आपसे मिलेंगे नहीं। ये थोड़े से अलग लेवल के दोस्त होते हैं यार। सिमरन कौरियाओ के साथ जियो बिंदास। अगर मैं बता रही हूँ इस कैरेक्टर के बारे में तो आपके दिमाग में अगर कोई चेहरा आ रहा है तो बता दो उसके बारे में।
2: रपासना हजारे ताऊ बॉस आ रिया से बेरा कोनी केतन है बॉस रे बॉस।

0: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.
1: Oh no, फिर से स्कूल. अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27th दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉन स्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है. अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है. स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर. मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में. वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर.
2: कॉल 7022525.
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
1: सिमरन के साथ।
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

चलो जी फिर अब ले लेते हैं आप सबके नाम, क्योंकि कब से आप मुझे सुन रहे हो और कब से मैसेजेस आ रहे हैं आपके। हाँ जी सिर्फ अपना नाम लिख के भेज दो। तीरथ जी थैंक यू सो मच, मोहम्मद जी थैंक यू सो मच, लियाकत जी थैंक यू सो मच, हबीब जी थैंक यू सो मच, माधवन जी थैंक यू सो मच, जैसा जी थैंक यू सो मच, शशिकांत जी थैंक यू सो मच, संधू जी, अबरार जी थैंक यू सो मच, अरबान जी थैंक यू सो मच, सुरेश जी थैंक यू सो मच, सईदा जी थैंक यू सो मच, हैंजो जी, क्रिस जी थैंक यू सो मच, विक्रम जी थैंक यू सो मच, लरीफ जी, पाली जी थैंक यू सो मच, फूल कुमारी जी, हारिस जी, सुल्तान जी थैंक यू सो मच, अबू बकर भट्ट जी थैंक यू सो मच, रवि जी थैंक यू सो मच, फिलिप जी थैंक यू सो मच, मुकेश जी थैंक यू सो मच, विनायक जी थैंक यू सो मच, मुजाहिद जी, दानिश जी, इमरान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, मनी जी थैंक यू सो मच, अवंतिका जी थैंक यू सो मच, आसिफ जी थैंक यू सो मच, हुसनैन जी थैंक यू सो मच, जल्टन जी थैंक यू सो मच, अहमद जी थैंक यू सो मच, आलम जी थैंक यू सो मच, अदील जी थैंक यू सो मच, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों को मैंने नाम ले लिया, अब आप बेटा थैंक यू लिखो और साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी बना दो। दैट्स इट।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: Hi Radio Olive 106.3 listeners. This is Ranveer Singh.
3: Ranveer Singh.
2: Stay tuned.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
4: Radio Olive, I'm the number one.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ
7: जबरदस्त इवनिंग. मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
8: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: आपके घर पे ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उधम मचा रहे हैं, धमाल मचा रहे हैं और इनका स्कूल चालू नहीं हो रहा है क्योंकि इनको एक आउटिंग की जरूरत है जो कि रेडियो ऑलिव करवा रहा है। क्योंकि समर वेकेशन खत्म होने से पहले आपके बच्चों को एक और फन चाहिए, बाहर निकलने का, गेम्स खेलने का और मजा करने का। ये 27 अगस्त को होने वाला है अबू सिद्रा मॉल में, जहां पर आपके बच्चे बहुत सारा फन करने वाले हैं बैक टू स्कूल बैश में। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इसमें आए, पार्टिसिपेट करें, तो एक छोटा सा काम कर लीजिए। आप olive.qa जो कि हमारी वेबसाइट है, olive.qa पे जाके बैक टू स्कूल का फॉर्म फिल कर लीजिए क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं, तो जितना जल्दी हो सके खुद को रजिस्टर करवा लीजिए एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद आपको हमारी तरफ से कॉल आ जाएगा, फिर आप लोग अटेंड करेंगे और फन करेंगे।
1: वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर, प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
2: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास। इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

हाँ जी, मैं किसी सोनियो की दादी की हालचाल पे जा रहा हूँ। आई एम गोना मिस यू। ये मिस यू क्या होता है? रेडियो वाली के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, फिर मिस यू करने का मौका ही नहीं देंगे हम। मैं कह रही सुने हो कितना देखिए, चल सच गया सिमरन कौर है थोड़े नाल। एंड जबरदस्त इवनिंग्स में मैं आपको बताऊंगी कि एक भी दिन आप जबरदस्त इवनिंग्स मिस मत करिएगा, वरना अपन नाराज हो जाएंगे, क्योंकि हम आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पर आप मिस करने का मौका ही ना ला सके। मतलब रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन अगर आपके फोन में है तो 24/7 एक तो म्यूजिक चल रहा है। आप जहां पे भी हो, वेकेशन में हो, जहां पर आप इंडियन म्यूजिक को मिस कर रहे हो, हमारे शोज को मिस कर रहे हो, तो आप एप्लीकेशन ऑन करो तो म्यूजिक ऑन हो जाएगा। एंड अगर कुछ नया हम कॉन्टेस्ट वगैरह लेके आ रहे हैं और इवेंट होने वाला है जहां पर आप छुट्टी से वापस जब आए और वो इवेंट हो जाए और आपको पता ना लगे, तो फिर वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी ना। और आप इंडिया में बैठे बैठे रजिस्टर करवा सकते हो अगर तब तक आप वापस आने वाले हो। अगर आप पाकिस्तान में भी गए हो और इवेंट जो है आपके आने के बाद होगा, लेकिन आपको रजिस्टर पहले करवाना, तो आपको पता लग जाएगा। सो मेक श्योर कि आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, हमारे सोशल मीडिया को भी फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी हम बहुत सारी अपडेट्स देते रहते हैं। ठीक है, सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 FM रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन.

चलो बेबीडॉल, अब 4 घंटे अपने जो थे ना वो खत्म हो गए हैं। लेकिन कल मंडे शाम को 5 बजे फिर से होती है आपसे मुलाकात। जबरदस्त इवनिंग्स में बहुत सारिया गल्ला मैं फिर तो लेके आवांगी, क्योंकि मेरी गल्ला खत्म नहीं होंगी है। अपना अपनी पंजाबी की बैटरी चार्ज जी है वो हमेशा होंगी रहती है। सो 2 घंटे जो है अगले मिडनाइट लाउंज को दीजिए और इंजॉय करिए एकदम मस्त वाला म्यूजिक। सो ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करिएगा, खाने पीने रहो, ऐश कर दे रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू, सो किलो।

Good evening. You are listening Radio All 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Aur show ka naam hai Midnight Lounge. संडे का एक अजीब सा सीन होता है. अलार्म बजता है, आप रेडी होते हो, ऑफिस पहुंच भी जाते हो, लेकिन दिमाग बोल रहा होता है भाई कल तो सैटरडे था. कतर में फ्राइडे सैटरडे वीकेंड होने की वजह से संडे एक्चुअली वर्क वीक का फर्स्ट डे हो जाता है, राइट? और शायद इसीलिए संडे को ट्रांजिशन जो लेना है वो थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है. दो दिन आप अपने टाइम पर जीते हो, फिर सडनली ईमेल्स, मीटिंग्स, डेडलाइंस और स्केड्यूल्स वापस आ जाते हैं. लेकिन एक इंटरेस्टिंग थॉट भी है, क्या हम संडे को इसीलिए टायर्ड फील करते हैं क्योंकि काम डिफिकल्ट है, या क्योंकि हम वीकेंड से वर्क मोड में ट्रांजिशन प्रॉपरली कर ही नहीं पाते? मे बी संडे को मंडे जैसा ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, बस एक फ्रेश बिगनिंग समझने की जरूरत है. आप बताइए, संडे को आपका दिमाग ऑफिस में होता है या अभी भी आपको वो वीकेंड वाला सोफा याद आता है? बाय द वे, मेरे लिए संडे इज अ ब्यूटिफुल डे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब अगले 5 दिन मैं और आप खूब सारा काम करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं, अपने अपने टारगेट्स को और ज्यादा अच्छे से अचीव करने वाले हैं. सो मुझे तो बहुत मजा आता है संडे को. आप मुझे बताइए कि आपका संडे कैसा रहा. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM 3311 1063 इज माई नंबर. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: ओह नो, फिर से स्कूल।
2: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
3: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
2: एंड
3: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
2: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
3: कॉल 7022525।
2: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
4: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
2: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

good evening. Welcome back. You are listening Radio All at 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Aur show ka naam hai Midnight Lounge. Subah aankh khulti hai aur health automatically phone ki tarah WhatsApp, Instagram, emails, news aur kabhi kabhi to hum duniya ke bare mein sab kuch jaan chuke hote hain. Before we have even asked ourselves how we are feeling. फ़ोन सुबह सुबह उठाना इज वेरी डिफ़िकल्ट. फिर आपके कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ सेकंड्स आपको पता ही नहीं चलेंगे. सोचिए आपके दिन के पहले 10 मिनट में जो चीज़ें एंटर करती हैं वही आपके माइंड का फर्स्ट कॉन्वर्सेशन बन जाती हैं. इसीलिए कल एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, फ़ोन उठाना थोड़ा डिले कीजिए. आई नो कि मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट है, अलार्म फ़ोन में होता है और सबसे पहले फ़ोन ही देखते हैं. पहले चाय पीजिए, थोड़ी खामोशी, विंडो से बाहर देखिए और बस डिसाइड कीजिए कि आज का मूड दुनिया डिसाइड करेगा या आप. मतलब क्योंकि समटाइम्स यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्ट्रेसफुल डे स्टार्ट ना करें. व्हेन वी स्टार्ट इट शुड बी यू नो वेरी साइलेंट, वेरी नाइस डे. सो आप उठते ही सबसे पहले क्या चेक करते हो, फोन, टाइम, मैसेज या अपने घर के लोगों को? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311106. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

हर ऑफिस में ना एक इंसान होता है ऑफिशियली कॉलीग बट प्रैक्टिकली इमरजेंसी कॉन्टैक्ट. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. बॉस का मूड खराब हो उसको पता, लंच का प्लान उसको पता है, आपका पर्सनल ड्रामा अनफॉर्चुनेटली वो भी उसको पता है. और इंटरेस्टिंगली एक रिसर्च सामने आई थी, गॉलप रिसर्च, जिसने ढूंढा कि हैविंग अ क्लोज फ्रेंड एट वर्क इज स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड विद एंगेजमेंट एंड अदर पॉजिटिव वर्क प्लेस. मतलब जो आउटकम आता है उसको लेके देर, मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाईलाइट्स ये हैं कि ट्रस्ट एज अ सेंटर पार्ट ऑफ मीनिंगफुल वर्क प्लेस फ्रेंडशिप. मतलब ऑफिस फ्रेंडशिप सिर्फ चाय और गॉसिप नहीं होती, कभी कभी वो स्ट्रेसफुल डे को मैनेजेबल बनाता है, क्योंकि सैलरी आपको जॉब में रखती है लेकिन अच्छे लोग जॉब को मतलब इंसान की तरह बना देते हैं. आपके ऑफिस में वो कौन है जिसके बिना मंडे संडे कोई भी दिन थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट और लॉन्ग लगने लग जाता है. बाय द वे यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज.

0: है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. कभी कोई ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग सुना है या 70s की कोई फोटोग्राफ देखी है और सडनली दिल ने कहा हो यार मुझे ये जमाना मिस हो रहा है. सो प्रॉब्लम, आप उस जमाने में थे ही नहीं, लेकिन इस फीलिंग को इस एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है, विच इज नॉस्टैल्जिया इज़न्ट ऑलवेज जस्ट अबाउट रिमेम्बरिंग योर ओन पास्ट. कभी हम एक इमेजिन पास्ट को भी रोमांटिसाइज करते हैं. ओल्ड कैफेज, स्लो कॉन्वर्सेशंस, लेटर, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स, ऐसा लगता है लाइफ है सिंपलर, मतलब उस टाइम पर, ठीक है. और साइकोलॉजिकल रिसर्च सजेस्ट करती है कि नॉस्टैल्जिया कैन स्ट्रेंथन आवर सेंस ऑफ सोशल कनेक्शन और मीनिंग एंड बिलोंगिंग्स. शायद इसीलिए पुरानी दुनिया हमें अट्रैक्ट करती है, नॉट बिकॉज इट वॉज परफेक्ट, बिकॉज वी इमेजिन इट वॉज स्लोअर. आपको कभी किसी ऐसे ज़माने की नॉस्टैल्जिया हुई है जिसमें आप खुद कभी रहे ही नहीं हो और आपको बस लगता है कि यार क्या ज़माना था. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, 3311063 इज माई नंबर. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: ये है मिडनाइट लव।

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM और ये है मिडनाइट लाउंज और मैं हूँ मुस्कान आपके साथ। कभी ऐसा हुआ है कि फ्रेंड के साथ डिनर के लिए गए हो, प्लान था बस एक घंटे का, फिर स्टार्टर आए, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, फिर चाय, फिर एक बात बताओ, और जब क्लॉक देखी तो 3 घंटे ऑलरेडी हो चुके थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली वो 3 घंटे कभी वेस्ट नहीं लगते, क्योंकि कुछ कॉन्वर्सेशंस का पर्पस जो है वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना नहीं होता, कनेक्शन होता है। आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, आपको बस कोई चाहिए जो कहे कि हाँ समझ रहा हूँ। और शायद इसीलिए कुछ लोगों के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मुझे टाइम बिताना पसंद है, जिनके साथ मुझे वो 1 घंटा कब 3 घंटे हो जाते हैं बिल्कुल पता नहीं चलता। आपकी लाइफ में वो कौन है जिसके साथ 5 मिनट कॉन्वर्सेशन कभी 5 मिनट होती ही नहीं है? 3311063 is my number. You are listening Radio Olive और ये है मिडनाइट लाउंज।

अच्छा आज रात एक कन्फेशन करते हैं, आप अपनी अलमारी खोलिए और एक ऐसा आउटफिट निकालिए जो आपने शायद पिछले 2 साल से पहना ही नहीं है, लेकिन फेंकना इम्पॉसिबल, ये एक्सपेंसिव है, कभी तो पहनूंगी, इसकी एक कोई खास यू नो याद है, और वो कपड़ा वापस से आपके वार्डरोब में चला जाता है। बट देयर इज समथिंग डीपर हियर। हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह नहीं रखते, कभी वो किसी वर्जन को यू नो कनेक्ट करता है। वो ड्रेस जो किसी स्पेशल डे पर पहनी थी, वो शर्ट जो किसी ट्रिप की याद है, वो जैकेट जो अब फिट ही नहीं आती बट उसकी याद अभी भी आती है। इसीलिए लेटिंग गो समटाइम्स नॉट अबाउट द थिंग, इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग दैट चैप्टर हैज़ चेंज्ड। और मुझे ऐसा लगता है ना समटाइम्स कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद हमारे यूज़ की अब नहीं बची होती, पर वो हटाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपके वार्डरोब में वो कौन सी चीज़ है जो आप पहनते नहीं हो बट फिर भी उसे अलग नहीं कर पाते, आपको लगता है कि नहीं यार कभी तो काम आएगी। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

सो बेसिकली संडे से थर्सडे तक, ठीक है, हम सब एक रोल प्ले करते हैं, एम्प्लॉय, मैनेजर, बॉस, प्रोफेशनल, रिस्पॉन्सिबल एडल्ट. लेकिन वीकेंड पर जब कोई आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तब आप क्या चूज करते हो? स्लीप, फ्रेंड्स, फैमिली, खाना, ट्रैवल करना, या एकदम सिंपल रहना? अब देखिए, आज अगला दिन भी निकल गया, संडे भी गया, और आई वॉज थिंकिंग कि मंडे को भी कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप और मैं मिलके करने वाले होते हैं. सो शायद हमारी पर्सनालिटी का एक ऑनेस्ट वर्जन जो है वो वीकेंड पर दिखता है, क्योंकि वीकेंड ये हमें बताता है कि व्हाट वी हैव टू डू. वीकेंड ये हमें बताता है कि व्हाट एक्चुअली वी वांट टू डू. और इसीलिए वीकेंड को देखकर किसी के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है. सो आज देखिए, वर्क वीक स्टार्ट हुआ और कितनी सारी चीज़ें हमने स्टार्ट की. अगर कोई आपके सिर्फ वीकेंड को ऑब्जर्व करे, तो वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या गेस करेगा? अगर कोई मेरी पर्सनैलिटी गेस करने बैठ जाए ना, तो उसे समझ में आ जाएगा मैं कितनी बड़ी आलसी हूँ. मतलब मैं हर चीज़ प्लान करती हूँ, सोचती हूँ, मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कि ठीक है यार, रहने देते हैं, जाने देते हैं, बस ऐसे ही करते करते टाइम निकल जाता है. आप बताइए आपकी वीकेंड पर्सनैलिटी क्या है. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और मैं हूँ मुस्कान आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज,
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

So, आज एक शो एंड करने से पहले थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं भाई. हम पूरे 5 दिन काम करते हैं, संडे से लेके थर्सडे तक, ठीक है, सैलरी के लिए, टारगेट्स के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, फ्यूचर के लिए. और फिर वीकेंड आता है, 2 दिन निकलते हैं और संडे नाइट हम फिर वही साइकिल स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, मतलब हमें लगता है कि यार कल फिर मंडे है और सैटरडे आते आते तो सबके दिलों की धड़कन बढ़ जाती है क्योंकि संडे को बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं. तो कभी कभी खुद से पूछना चाहिए जो लाइफ में मैं बना रही हूँ अपने लिए या मैं बना रहा हूँ अपने लिए, क्या मुझे वो लाइफ एक्चुअली पसंद है. इसका मतलब ये नहीं कि जॉब छोड़ दो, सिटी चेंज कर दो, कंट्री चेंज कर दो, सब कुछ रीस्टार्ट कर दो. समटाइम्स चेंज इज मच स्मॉलर, मोर टाइम विद फैमिली, थोड़ा सा अननेसेसरी कमिटमेंट्स कम कीजिए, एक हॉबी बनाइए, बेटर बाउंड्रीज बनाइए, या सिंपली अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए. क्योंकि लाइफ का गोल सिर्फ सक्सेसफुल लाइफ बनाना नहीं है, उस लाइफ में खुश रहना भी है. सो आज रात का सवाल है, अगर दुनिया आपको जज ना करे तो अपनी करंट लाइफ में एक चीज क्या चेंज करना चाहोगे आप. मैं हूं मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज, जहां संडे खत्म होने से पहले हम थोड़ा खुद से भी मिल लेते हैं. गुड नाइट फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लव।

Olive 106.3 FM. Gio Bendaz.

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

FM एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: Olive. 106.3 FM.
1: Radio Olive. Geo Binda.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3।